के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

साईं जा अॼु सालगिरह जो ॾींहुं आहे असदुल्ला जूणे जो उनजी अॼु बर्थडे आहे सालगिरह आहे ऐं असां पाण उनखे हैप्पी बर्थडे चऊं पिया ऐं असां उनखे सालगिरह जूं लख लख मुबारकूं ॾियूं पिया असांजी तरफ़ां दुआ आहे त ही साल असदुल्ला जे लाइ ज़िंदगी में ख़ुशियुनि जो साल हुजनि ऐं असां दुआ पिया कयूं त गुलाब जे गुल जीअं खिलंदा मुस्करंदा रहनि ऐं असदुल्ला जा समूरा ख़्वाब पूरा थियनि ऐं उन्हनि जे वजूद सां असांजूं रौनकूं आहिनि ऐं अलाह साईं हमेशह उनखे आबाद रखे शाद रखे ऐं हमेशह असदुल्ला खिलंदो मुस्कराईंदो रहे आमीन ऐं बर्थडे जे हवाले सां ख़ूबसूरत नगमो आहे असदुल्ला जे नाम

समझा सावल मीराली जो गजल हुआ जिना मुर्की नेण मिलाए दिल खणी वियां मुर्की नेण मिलाए दिल खणी वियां जोरीअ कीअं हलाए दिल खणी वियां वेंजी सिंजी सरसु करे सिंगार पिरी वेस गुलाबी पाए दिल खणी वियां माणा टाणा अंगल आरा नाज नियारा वेतर पाण वणाए दिल खणी वियां घोरे नज़रुनि सां निहारी मुर्की मारी हुई घूरे नज़रुनि सां निहारी मुर्की मारी शोखीअ सां शर्माए दिल खणी वियां सुरंदे सुरंदे पाण अची भर में वेही कुख में चूंडड़ी पाए दिल खणी वियां तुंहिंजी कयल कचहरी मूंखां नथी विसरे गुणनि भरियो ॻाल्हाए दिल खणी वियां सीने में जो ॾिठमि त सांवल दिल कान्हे हथ हणी कयमि हाए दिल खणी वियां

जी हा समय प्रोग्राम रोशन सुभा मुताबिक़ जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां हिन वक़्त न्यूज़ ब्रेक ऐं कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ हलूं पिया। वापसि ईंदासीं कॾहिं बि न वञिजो ऐं वरी अवां सां ईंदासीं, गॾु थींदासीं, अव्हांखे वरी सवाल बि नोट कराईंदासीं, अव्हांखे चूंड मूसीक बि ज़रूरु ॿुधाईंदासीं।

आपने हरमुज मां तेल जी सप्लाई रोकण जी सलाहत नथो रखे गुजरे लिए आपने हरमुज मां 1.5 करोड़ बैरल तेल क्रॉस करायो ईरान के बहरी जहाजन ते हमला रोकणा पवंदा जेस ताईं तजारती जहाजन ते हमला बंद नथा थियनि ईरान सां ॻाल्हियूं न थींदियूं फिलहाल नथो चई सघिजे त ईरान जंग में ड्रम इलेक्शन

हमेशा एक रांदी सिंध असेंबली सिंध के वहदत खिलाफ थींदड़ साज़िशन ऐं धरती जे इम्कानी विरहाङे खिलाफ़ हिकु भेरो ॿीहर यकराउ ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। सिंध असेंबलीअ में नवनि सूबनि इंतिज़ामी यूनिट्स बाबति रिथे बहस मुकमिल थियण बाद पीपल्स पार्टी एम पी निसार कोड़ो सिंध जे इम्कानी विरहाङे खिलाफ़ ठहराउ पेश कयो, जेको ऐवान यकराउ मंज़ूर करे वरितो। ठहराउ में चयो वियो आहे त मुल्क में नवनि सूबनि इंतिज़ामी यूनिटनि जे हवाले सां नए सर बहस शुरू थी वियो आहे। अहिड़नि तजवीज़नि जो असर सिंध ते पइजी सघे थो। सिंध हिकु तारीख़ी तहज़ीबी ऐं आइनी सुञाणप रखंदड़ खिदो आहे। सिंध जी सुञाणप ऐं इलाक़ाई तसलसल सदियूं पुराणो आहे। सिंध अणटुट सूबे जी हैसियत सां पाकिस्तान में शमूलियत इख़्तियार कई हुई। हीउ ऐवान हिकु भेरो वरी सिंध जे इम्कानी विरहाङे खे सख़्तीअ सां रद्द करे थो। निसार अहमद कोड़े पारां पेश कयल ठहराउ जे मतन में चयो वियो आहे त सिंध असेंबली छह भेरा ठहराउ मंज़ूरु करे सिंध जे इम्कानी विरहाङे खे रद्द करे चुकी आहे। आइन में वाज़े आहे त सूबे जूं हदूं तब्दील करण लाइ लाॻापियल असेंबली मां ठहराउ منظور تھن ضروری ہے سندھ ماں کہیں بھی ضلع ڈویژن جا علاقے کے دار کرن یا وفاقی نظام جے ماں تحت رکھن کے رد کرے تو صوبہ اسمبلی سندھ جے حدن میں کہیں بھی قسم کی تبدیلی کی اجازت نہ تھی دے ایوان واضح لفظن میں اعلان کرے تو سندھ ایک آئے ہمیشہ ایک ہی رہندی

नथा चाहिनि तैवान मां भॼी छो विया। नवनि सूबनि जो फ़ैसिलो टीवी प्रोग्रामनि ज़रिए न पर असेंबली में थियणो आहे। ख़बर पइजी वई त कहिड़ा माण्हू सिंध जे विरहाङे जे ख़िलाफ़ आहिनि ऐं कंहिंजो बिटो मयार आहे। टीवी विकिणे बंदूक खणण जी ॻाल्हि कंदड़ लीडर ख़बर नाहे हाणे किथे वेठो आहे। सिंध जे वहदत ते बिटो मयार क़बूल नथो करे सघिजे। ख़बरदार कयूं था त पोलिस असेंबली बि सिंध जे विरहाङे जी ॻाल्हि नथी करे सघे। वरी वज़ीर सैद मुराद अली शाह जो सिंध असेंबलीअ में ख़िताब। वरी वज़ीर चयो त लाहौर में वफ़ाकी वज़ीर निज़ाम तबाह थियण जो चयो। बिज़नेसमैननि ताड़ियूं वॼायूं। छा हाणे अरबपति बिज़नेसमैन नवनि सूबनि जो फ़ैसिलो कंदा? सम्झ में न पियो अचे सिंध असेंबलीअ में मौजूद मुबैना पीटीआर वारा हिदायतूं कंहिंखां वठी रहिया आहिनि? पीटीआर वारा असांजे साम्हूं अची चवंदा हुआ उहे सिंध जे विरहाङे जे ख़िलाफ़ आहिनि।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिबसे की बनी है आवाज।
0: जीए FM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
1: फातिह मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
0: जीए FM 88 नेटवर्क,
1: सिंध

असम जा प्रोग्राम रोशन सुबह ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां, जंहिंमें सखर, लाड़काणो, मीरपुर, ख़ासि मोरो, मेहरापुर, सकरंड, मटियारी ऐं मातली स्टेशन तां। ऐं असांखे असां हिन हफ़्ते जो सुवाल नोट कराईंदासीं। काफ़ी दोस्तनि सुवाल नाहे ॿुधो ऐं मां ॿ दफ़ा सुवाल नोट करायो आहे, पर दोस्तनि न ॿुधो आहे जो किथे किथे स्टेशन ते कमर्शल जे करे थोरी अॻे पोइ थी वेंदी आहे। सुवाल आहे त जेके चैरिटी यानी खैराती कम आहिनि उन्हनि जो आलमी ॾींहुं कॾहिं मल्हायो वेंदो आहे। जी साईं मुंहिंजा, खैराती कम यानी चैरिटी, के काफ़ी हॉस्पिटलूं खैराती हूंदियूं आहिनि, किथे लेबॉरेटरियूं खैराती हूंदियूं आहिनि, ऐं काफ़ी अहिड़ा किथे स्कूल हूंदा आहिनि जेके उहे खैराती हूंदा आहिनि, चैरिटी हूंदा आहिनि। बहरहाल काफ़ी शयूं आहिनि चैरिटी यानी खैराती कमनि जो आलमी ॾींहुं कॾहिं मल्हायो वेंदो आहे। तव्हां असांखे SMS ज़रिए बि ॿुधाए सघो था, तव्हां असांखे फेसबुक ते बि नोट कराए सघो था, तव्हां असांखे मोबाइल नंबर ते बि तव्हां असांखे सवाल जो सही जवाबु ॿुधाए सघो था।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स, 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, रिहैबिलिटेशन यूनिट, न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे

इस्लामाबाद 44 सालन जी वसी तजुर्बे सा हर किस्म जा आसाब यमराज जोड़न जो सूर मैदे में जलन गैस बदहजमी तेजाबियत गुर्दन जी पथरी बवासीर बेऔलादी वारन जो किरण गंजपण फॉलेज खारिश आईबीएन मुख्तलिफ सेहत जी तकलीफुन लाए

आहे हमेशह हिक रांदि सिंध असेंबली सिंध जी वहादत ख़िलाफ़ थींदड़ साज़िश ऐं धरतीअ जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ हिकु भेरो ॿीहर इक़रार ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। सिंध असेंबलीअ में नवनि सूबनि ऐं इंतिज़ामी यूनिट्स बाबति रिथ ते बहस मुकमिल थियण बाद पीपल्स पार्टी एम पी ए निसार खोड़ो सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ पेश कयो, जेको ऐवान जो इक़रार मंज़ूर करे वरितो। ठहराउ में चयो वियो आहे त मुल्क में नवनि सूबनि ऐं इंतिज़ामी यूनिटनि जे हवाले सां नए सिर बहस शुरू थी वियो आहे। अहिड़ियुनि तजवीज़नि जो असर सिंध ते पइजी सघे थो। सिंध हिकु तारीख़ी तहज़ीबी ऐं आइनी सुञाणप रखंदड़ ख़ितो आहे। सिंध जी सुञाणप ऐं इलाक़ाई तसलसल सदियूं पुराणो आहे। सिंध अणटुट सूबे जी हैसियत सां पाकिस्तान में शमूलियत इख़्तियार कई हुई। हीअ ऐवान हिकु भेरो वरी सिंध जे इम्कानी विरहाङे खे सख़्तीअ सां रद्द करे थो। निसार अहमद खोड़े पारां पेश कयल ठहराउ जे मतन में चयो वियो आहे त सिंध असेंबली छह भेरा ठहराउ मंज़ूर करे सिंध जे इम्कानी विरहाङे खे रद्द करे चुकी आहे। आइन में वाज़े आहे त सूबे जूं हदूं तब्दील करण लाइ लाॻापियल असेंबलीअ मां ठहराउ मंज़ूर थियणु ज़रूरी आहे। सिंध मां कंहिं बि ज़िले डिवीज़न जा इलाइक़े खे धार करण या वफ़ाक़ी निज़ाम जे मातहत रखण खे रद्द करे थो। सूबाई असेंबली सिंध जे हदनि में कंहिं बि क़िस्म जी तब्दील जी इजाज़त नथी ॾे। ऐवान वाज़े लफ़्ज़नि में ऐलान करे थो त सिंध हिकु आहे हमेशह हिकु रहंदी। एम क्यू एम वारा सिंध जो विरहाङो नथा चाहिनि त ऐवान मां भॼी छो विया। नवनि सूबनि जो फ़ैसिलो टीवी प्रोग्रामनि ज़रिए न पर असेंबली में थियणो आहे। ख़बर पइजी वई त कहिड़ा माण्हू सिंध जे विरहाङे जे ख़िलाफ़ आहिनि ऐं कंहिंजो बिठो मयारु आहे। टीवी विकिणी बंदूक खणण जी ॻाल्हि कंदड़ लीडर ख़बर नाहे हाणे किथे वेठो आहे। सिंध जी वहदत ते बिठो मयारु क़बूल नथो करे सघिजे। ख़बरदार करियूं था त क़ौमी असेंबली बि सिंध जे विरहाङे जी ॻाल्हि नथी करे सघे। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जो सिंध असेंबली में ख़िताब। वॾे वज़ीर चयो आहे त लाहौर में वफ़ाक़ी वज़ीर निज़ाम तबाह थियण जो चयो त बिज़नेसमैननि ताड़ियूं वॼायूं। छा हाणे अरबपति बिज़नेसमैन नवनि सूबनि जो फ़ैसिलो कंदा? समुझ में न पियो अचे त सिंध असेंबलीअ में मौजूदु मुबैना पी टी वी वारा हिदायतूं कंहिंखां वठी रहिया आहिनि। पी टी आई वारा असांजे साम्हूं अची चवंदा हुआ उहे सिंध जे विरहाङे जे ख़िलाफ़ आहिनि। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एडमिटेल खे फ़ौज लाइ वज़ीर नामज़द करे छॾियो। एडमिटेल डिस्कोर जी जॻह ते ज़िमेवारियूं संभालींदो डिस्कोर बजाउ वारे वज़ीर सां इख़्तिलाफ़नि बाद पंहिंजे उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई हुई। एडमिटेल अमेरिकी फ़ौज बाबति सिविल मामलनि जो ज़िमेवार हूंदो। गाजी खावर वेझो मीर वाजे आबादगारनि जो पाणीअ खां ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। आबादगारनि पारां पोछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। मुज़ाहिरनि चयो आहे त मीरवा में पाणीअ जी सख़्त खोट आहे। पोछड़ में फसल सुकी रहिया आहिनि। आपाशी खातो पाणी विकिरो करे रहियो आहे। पोछड़ ताईं पाणी पहुचायो वञे। उबावड़ो भरिसां रेणी केनाल मां औरत जो हथु पेर ॿधल लाश हथ आयो आहे। सुञाणप न थी। पुलिस जो चवणु आहे त औरत जे जिस्म ते तशद्दुद जा बे निशान आहिनि। वधीक जांच जारी आहे। अहमदपुर वेझो चांडिया बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो लथियूं ऐं डाटा लॻण सबबि ॿिन्ही धुरियुनि जे चइनि औरतनि समेत 12 ॼणा ज़ख़्मी। ॿिनि ॼणनि जी हालति ॻणती जोगी। ॻोठ फतेह अली चांडियो में चांडिया बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में घिटीअ जे मामले तां झेड़ो थियो। झेड़े दौरान ॿिन्ही धुरियुनि जे चइनि औरतनि समेत 12 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। इस्पताल मलीर सिटी जे इलाइक़े गाज़ी बरोई ॻोठ जे मलीर मॉडल सेकेंडरी स्कूल जी इमारत ते कब्ज़ो बरक़रार। सवे शागिर्दनि ऐं शागिर्दनि एहतजाजी रोड ते असेंबली करे रोड ते पढ़ण लॻा। उस्तादनि ऐं शागिर्दनि पारां स्कूल तां कब्ज़ो ख़तमु कराइण जो मुतालबो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास। GAFM 88 की आवाज।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: तमाम भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए थे ठाण चाहो था जिते हो जे तहफुस जदीद सहूलतों आई मंजूर थेल सिक्योरिटी
4: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
3: सखर शिकारपुर रोड ते
4: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल सामने
3: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थेल
4: एक शानदार आई काबिले एतमाद रिहायशी मनसूबो
3: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
4: रिहायशी प्लॉट्स 80, 120, 150 गज
3: आई कारोबारी मौके कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज और 600 गज
4: इतने तमाम के मिलन थी जदीद सहूलतों
3: साफ में चौपानी
4: बिजली गैस
3: 24 कलाक सिक्योरिटी
4: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल आई सबका वडी गाल ही मंसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेजो आहे
3: जेको रिहायश आई सीड़पकारी बिनी लाए बेहतरीन मौके बनाए थो
4: अजय पेंजी प्लॉट जी बुकिंग करायो
3: फौरी कब्जो आई फौरी रजिस्ट्री
4: कॉन्टेक्ट
3: 03009317252
4: and 03132757860 Husaini Manzil Housing Scheme Sakhar
3: Tamaje mehfooz mustaqbal aur behtareen investment jo behtareen intekhab
5: अगर खूबसूरती खपे तो आर्ट्स अपनायो आर्ट्स ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो अवां जी सेंसिटिव स्किन के अंदर खां रिपेयर करे सिर्फ 3 दिन में डार्क स्पॉट्स एक्नी और स्कार्स घटाए स्किन के बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग और ये शानदार मिरेकल ग्लो कुदरती चमक और निखार जो बेहतरीन इंतखाब आर्ट्स ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जे पेंजे शहर सखर आई रोड़ी में
6: जिना अस्पताल कराची जो तर्बियती आफ्ता
5: आई टीबी अस्पताल खैरपुर जो मशहूर
6: एलर्जी दमो टीबी फेफड़न आई छाती जे मुख्तलिफ बीमारियन जो माहिर
5: डॉक्टर मोहम्मद नासिर सुमरो
6: चेस्ट स्पेशलिस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट
5: माहिर अमराज
6: फेफड़न में गारो फेफड़न में पानी आई फेफड़न में हवा भरजन
5: टीबी निमोनिया आई बारन में छाती जी बीमारी
6: मोटापे जे करे निंड आई साह में तकलीफ
5: सहको दमो सिगरेट नोशी खान निजात
6: बार बार नज़लो जुकाम पुरानी खंग
5: आई बलगम में रत अचण वगैरह
6: क्लिनिक टाइमिंग्स हर छंछर का अरबा ताई शाम 6 का 7 बजे ताई डॉक्टर शाहिद मीरानी हॉस्पिटल तीर चौक बैराज रोड सखर हेरा अस्पताल जे वेझो
5: हर खमीस आई आचर दे
6: इंडस अस्पताल घोटकी में
5: मंझंद 1 का शाम 6 बजे ताई
6: इन का अलावा रोजाना सुबह जो 9 बजे का मंझंद 1 बजे ताई
5: तालका अस्पताल रोड़ी में मरीजन जो मुफ्त मुआयनो कंदा
6: डॉक्टर मोहम्मद नासिर सुमरो
5: राबते जिलाई
6: 03311 390 87 81 छा तवा जो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजन तो पई तवा लाए आए एक बेहतरीन मौको सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाए दाखलाओ जारी आहिन 4 सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN GBSM 5 सालन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD 5 सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV CMW CNA खास सहूलतों स्कॉलरशिप्स मौजूद बिन सालन जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री जरे त डीपीडी प्रोग्राम में सिर्फ ₹10,000 दाखला फीस आई फीस सेमेस्टर सिर्फ ₹60,000 हिते तवा के मिलंदा एयर कंडीशनड क्लासरूम्स जदीद लेबोरेटरीज मुकम्मल लाइब्रेरी तजुर्बेकार फैकल्टी हॉस्टल पिक एंड ड्रॉप आई फिजियोथेरेपी ओपीडी जी बेहतरीन सहूलत ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा आई पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे याद रखो सीट्स महदूद आहिन तह करे पंजे रोशन मुस्तकबिल लाए अजी दाखला वचो एक खास गाल इते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सेस ओटी हेल्थ टेक्नीशियन एम या सब कोर्सेस पिन थिंदा आहिन एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 सखर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर राबतो 07115635642 आई 03108161
3: 6111।
4: मौसर होम्योपैथिक इलाज अब सखर शहर में डॉक्टर आजम अली मुगल के साथ। मेदे की खराबी, गैस, बदहजमी, कब्ज, खूनी उबारी बवासीर, अर्कुन निसा, घुटनों, जोड़ों और कमर दर्द, गुर्दों की पथरी समेत मौतदित अमराज के लिए मुस्तनद होम्योपैथिक तशखीस और इलाज। हर मरीज का इंफरादी मुआयना, मुकम्मल रहनुमाई और बीमारी की नौयत के मुताबिक इलाज। टाइमिंग रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। जुम्मा तातील। एड्रेस अली होम्योपैथिक क्लिनिक, पुलिस हेडक्वार्टर चौक, होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप के बराबर में, रेस कोर्स रोड, सखर। राबता 03112082600 एंड 03317143311। डॉक्टर आजम अली मुगल।
3: GAFM 88

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: ऐं कारू झरजी कोयल फौजिया सूमरो जे विछोड़े खे चोवीह वरह वहामी विया। संदसि गायल गीतनि जो अॼु बि हज़ारे दिलनि ते राज बरकरार।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा और

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर।
1: हेल्थ सेंटर सोबोदे रोजे डॉक्टर ने समूरे स्टाफ अस्पताल अगया मुजाहरो भी कयो। मुलाजमन जो चवण है SHO अस्पताल में मुलाजमन के गुथा लफ्ज गलाया है। केस दाखिल करण जो केस धमकियों नहीं छोड़ो है, इंसाफ कयो वने।

घर में मोटरसाइकिल चोराए फरार थींदड़ हिकु जवाबदार खे शेरिन पकड़े वरितो। ॿियो फरार थी वियो नादरा ऑफिस ॿाहिरां। मोटरसाइकिल चोरी करे फरार थींदड़ जवाबदारनि खे शेरिन पकड़े वरितो। हिकु फोरू मोटरसाइकिल समेत पकड़िजी पियो। ॿियो फरार थी वञण में कामयाब थी वियो। शेरिन पकड़ियल फोरू पुलिस हवाले करे छॾियो। फुलजी स्टेशन भरिसां 8 ॼणनि जे क़तल केस में 14 ॼणनि जी गिरफ़्तारी। ज़ाहिर हथियार बेहद कया विया। चांडिया बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में जेड़े दौरान क़तल थियल 8 ॼणनि जे केस में पुलिस जूं कारवायूं। पुलिस गुझी इतलाह ते छापो हणी क़तल में मुलविज़ जवाबदार गिरफ़्तार कया। गिरफ़्तार जवाबदारनि में मोहम्मद यासीन सिंगार, तौफ़ीक शेर जान, राशिद चांडियो ऐं ॿिया शामिल आहिनि। गिरफ़्तार जवाबदारनि वटां 3 कलाशनकोफ, 3 G3 बंदूकूं ऐं वॾे अंग में गोलियूं हथु कयूं आहिनि।

कारूं झर जी कोयल फौजिया सुमरो जे विछोड़े के चौवीह वर वाहमी वया संदस गायल गीतन जो अज भी हज़ारे दिलन ते राज बरकरार आहे।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में ज़बरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
1: स्किन केयर के लिए दुनिया भर में ख़वातीन का अव्वलीन इंतखाब फाइज़ा ब्यूटी क्रीम। इसमें शामिल अज़ा आपकी स्किन को रखे हेल्थी, खूबसूरत और जवान। फाइज़ा ब्यूटी क्रीम।

वक्त हालतूं ऐं वाकिया मुसलसल तब्दील थींदा रहनि था। मुस्तकिल हुजे थी सिर्फ़ तब्दीली। हर पल तब्दील थींदड़ वाकियनि जा नवां पहलू, वसी ऐं गहरो नुक़्ता नज़र, सिर्फ़ इनसाइड विद नाज़िरा मीर सां।

0: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जो शहर बहजो घर सकरण आए सकरण जो आवाज
2: GFM 90.8

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: माशी तरीके के जटादार इस्तेकाम तरफ वठी वञणो आहे। बुनियादी सुधारन वारो सिलसिलो भी जारी रखियो वेंदो। निजी शोबे के मुल्क जी सिंध जे सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण जी ज़ारत हे ट्रांसपोर्ट खाते जो इजलास। पीपल्स बस सर्विस डबल डेकर बस ईवी टैक्सी ए पिंक स्कूटीज मनसूबन ते गौर। ब्रीफिंग में बुधायो वयो त कंबर शादातकोट ए लाड़काणो रूट ते पीपल्स बस सर्विस जल्द शुरू कई वेंदी। शर्जील इनाम मेमण चयो त नवन रूट्स ते बस सर्विस लाइ समूरा इंतज़ाम मुकमिल कया वञनि। पीपल्स बस सर्विस जो दायरो वधाइण जो मक़सदु आवाम खे बहितर ट्रांसपोर्ट जी सहूलत फराहम करणु आहे। जयकमाबाद में केपीके जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी जी अॻुवाणीअ में पीटीआई जी रैली। सोहेल आफरीदी जी अॻुवाणीअ में निकितल रैली शहर जो गश्त कयो। सोहेल आफरीदी चयो त मुल्क में आवाम जी हुकमरानीअ लाइ जिदोजहद करे रहिया आहियूं, तरके लाइ आवाम जी ही ॻाल्हि मञणी पवंदी। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां निंगरी ऐं औरत समेत टिनि ॼणनि जा लाश हथ उॿावड़ो भरिसां रहणी केनाल मां औरत जो हथ पेर बदल लाश मिलियो, सुञाणप नथी सघी। रोड़ी वेझो क़ौमी शाहरा तां बि नौजवान जो लाश मिलियो, सुञाणप नथी सघी। नगर पार्कर वेझो 15 वरनि जी निंगरी जो वण में टंगियल लाश मिलियो। इस्पताल मुंतकिल घोट कोया वासण लक्ष्मी धीअरी सिंह कोहलीअ जो घर भरिसां ॿनीअ मां लाश मिलियो। वासण जो चवणु आहे त निंगरी घरोड़ी जे ॾिण लाइ कपिड़ा न वठी ॾियण ते आपघात कयो आहे। कराची जे वापारी मीर रज़ा केस जी अदालती जांच जारी। अदालती कमीशन SHO गुलिस्तान जोहर कामरान कुरेशी खे तलब करे वरितो। हेड वारनि खे बे नोटिस जारी। कमीशन पारां ॿिन्ही आफ़िसरनि खे 7 सेप्टेम्बर ते पेश थियण जी हिदायत। मीर रज़ा जो लाश गुलिस्तान जोहर थाणे जी हद मां मिलियो हो। गाजी खावड़ वेझो मीरवा जे आबादगारनि जो पाणी कोर्ट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। आबादगारनि पारां पोछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। मुज़ाहिरनि चयो आहे त मीरवा में पाणीअ जी सख़्त खोट आहे। पोछड़ में फसल सुकी रहिया आहिनि। आपाशी खातो पाणी विकिरो करे रहियो आहे। पोछड़ ताईं पाणी पहुचायो वञे। हैदराबाद में हाईवेज़ डिपार्टमेंट जे मुलाज़मनि जो मुतालबनि जी मंता लाइ एहतजाज। मुलाज़मनि पारां जाइज़ मुतालबा तस्लीम करण जो मुतालबो। अॻवाणनि चयो त हाज़िर सर्विस फोत थियल ऐं रिटायर्ड मुलाज़मनि जी औलाद खे ग्रेड 1-4 ताईं 25% कोटा तहत फौरी नौकरियूं ॾिनियूं वञनि। मलीर सिटी जे इलाइक़े गाज़ी बिरोई ॻोठ जे मलीर मॉडल सेकेंडरी स्कूल जी इमारत ते कब्ज़ो बरक़रार। समेत शागिर्दनि ऐं शागिर्दाणियुनि एहतजाजनि रोड ते असेंबली करे रोड ते ई पढ़णु लॻा। उस्तादनि ऐं शागिर्दनि पारां स्कूल तां कब्ज़ो ख़तमु कराइण जो मुतालबो। घोटकी पुलिस मुबैना तौर टिनि नौजवाननि खे खंभे गुम करे छॾियो। वारसनि जो एहतजाज। टिन्ही नौजवाननि खे आज़ादु करण जो मुतालबो। ॻोठु अबुल मीरबर जे रहवासियुनि पुलिस जे दलतनि ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। अॻवाणनि चयो त घोटकी पुलिस हफ़्तो पहिरीं टिनि नौजवाननि तनवीर अहमद तौफ़ीक़ नौमान वीराणीअ खे खंभे गुम करे छॾियो आहे। नौजवाननि खे आज़ादु कयो वञे।

0: दौलतपुर सफन में चयन बारन जी माओ जे कतल खिलाफ संदस वारसन जो दादू में एहतजाज महीनो अग कतल थे नुसरत मला जे वारसन एहतजाज मुजाहरो करे कचहरी रोड ते धरणो आयो। औरत जे वालिद मंजूर मला जो चवण आए ते धीए जे दौलतपुर सफन वासी शमन मला सा शादी कराई हुई। खेस चार बारन जो औलाद आए हू धीए के मुड़स ए सौरन गोलियों हणी कतल कयो आए। मुखालफन ते इल्ज़ाम आयो आए नुसरत जे मुड़स ए बेन के गिरफ्तार करे संदन खिलाफ कतल केस दाखिल कयो वञे। सखर में मोटरसाइकिल चोराए फरार थींदड़ एक जवाबदार के शहरीन पकड़े वरतो बियो फरार थी वयो। नादरा ऑफिस बाहरा मोटरसाइकिल चोरी करे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: GFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

अब तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਕੋ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਇਸ਼ਕ ਅਗੋਚਾ ਇਮਾਮ ਕੀਤਾ ਹੁਣ

नून लीग 28 आईनी तरमीम ते पीपल्स पार्टी के एतमाद में वठण वारियूं कोशिशूं तेज करे छॾियूं। कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ जी लंडन में सदर आसिफ़ इज़दारी सां मुलाक़ात। 28 आईनी तरमीम जे तयार कयल मसौदे ते सदर आसिफ़ इज़दारी खे एतमाद में वठण जी कोशिश। सदर आसिफ़ इज़दारी सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह फरहल टालपुर ऐं नासिर शाह खे लंडन सॾाए वरितो। इजलास में 28 आईनी तरमीम बाबति अहम फ़ैसलनि जो इम्कान। खिते जे सालसन अमेरिका

खिते जे साल सां अमेरिका ऐं ईरान में ॻाल्हियुनि जी बहाली लाइ नई फ्रेमवर्क ते कमु शुरू करे छॾियो। बरतानवी मैगज़ीन फाइनेंशियल टाइम्स पंहिंजे रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त ओमान ऐं कतर तेहरान में वॉशिंगटन विच में ॻाल्हियुनि जी बहाली लाइ नए फ्रेमवर्क ते कमु करे रहिया आहिनि। अमेरिकी नायब सदर अमेरिका में तेल जे अघनि में वाध जो ज़िमेवार ईरान खे करार ॾेई छॾियो। ॻाल्हियुनि जी बहाली लाइ अबनार्मस खोलण जो बि शर्त रखी छॾियो। व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे जे डी वेंस चयो आहे त अमेरिका आबना हर्मुस में तेल बरदार जहाज़नि ते ईरानी हमलनि सबबि अमेरिका में तेल महांगो थी रहियो आहे। कुझु जहाज़ ईरानी हमलनि सबबि आबना हर्मुस मां गुज़रण नथा चाहिनि। जेके गुज़री रहिया आहिनि उन्हनि खे अमेरिका सिक्योरिटी फराहम करे रहियो आहे।

ॾियण लाइ केसि ताईं इंतज़ार करणु घुर्जे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ी जो उर्दनी हम मुनसिब जे बयान ते जवाब। अब्बास इराक़ी चयो आहे त ईरान ते हमलनि लाइ अरब मुल्कनि जे ज़मीन ऐं फिज़ा इस्तेमालु कई आहे, शायदि उर्दनी परॾेही वज़ीर खे ख़बर न आहे। मुश्किल फैसलनि सबबि मुआशी इस्तेहकाम आयो। पाकिस्तान खे ॿीहर उरूज ऐं ज़वाल वारी मुआशी चकर में वञण न ॾींदासीं। इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त मुल्क में सीड़पकारी वधाइण लाइ सीड़पकारनि खे सहूलियतूं ॾेई रहिया आहियूं। मुआशी तरक़ीअ खे जटादार इस्तेहकाम तरफ़ वठी वञिणो आहे। बुनियादी सुधारनि वारो सिलसिलो बि जारी रखियो वेंदो। निजी शोबे खे मुल्क जी मुआशी क़यादत करण जे क़ाबिल बणायो वेंदो।

रात में गुजीत लाते सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन 12 दहशतगर्द मार जाया आई एस पी आर मौजूद ऑपरेशन भारतीय सरपरस्ती में कम कंदड़ दहशतगर्दन के खात्मे लाइ कयो वियो। ऑपरेशन दौरान भारतीय सरपरस्ती में कम कंदड़ 12 दहशतगर्दन के जनम भेड़ो कयो वियो। हथियार ऐं बारूदी मवाद हथ कयो वियो। ज़िले कचे ऐं भाग नाड़े में बि दहशतगर्दी जो हमिलो नाकाम। पुलिस जी कार्रवाई में केतिरनि ई दहशतगर्दनि जे मारजण जा इतलाउ। इलाइक़े में क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण की सदारत हे ट्रांसपोर्ट खाते के इजलास। पीपल्स बस सर्विस डबल डेकर बस ईवी टैक्सी ए पिंक स्कूटीज मनसूबन से गौर। ब्रीफिंग में बुधा वो तो कंबर शादात कोट ए लाड़कानो रूट से पीपल्स बस सर्विस जल्द शुरू कई वी। शर्जील इनाम मेमण तो नव रूट्स से बस सर्विस ला समूरा इंतजाम मुकमिल क्या वन। पीपल्स बस सर्विस जो दायरों वधाने जो मकसद आवाम के बेहतर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करना है।

केजरीवाल वजीर सोहेल आफरीदी जी क्यादत में पीटीआई जी रैली जख्माबाद का थींदे शिकारपुर पहुंची वही। रैलीअ में पीटीआई कारकुनन जो वॾो अंग शरीक। सोहेल आफरीदी चयो त मुल्क में आवाम जी हुकुमरानीअ लाइ जिदोजहद करे रहिया आहियूं, तरक़ीअ लाइ आवाम जी ॻाल्हि मञणी पवंदी।

सिंध बैराजेज इम्प्रूवमेंट मनसूबे में अरबे रुपयनि जी बेज़ाबतियुनि जो इंशाह। बैराजेज मनसूबे जे नाक़िस रिथाबंदी ऐं देर ते वर्ल्ड बैंक जा संगीन एतराज़। मनसूबे में देर सबबि क़ौमी ख़ज़ाने ते 10,47 करोड़ रुपयनि जो वाधू ॿार पियो। बैराजेज जे बहालीअ वारे मनसूबे में वाधू ख़र्चनि वारो ॿार अवामी ख़ज़ाने ते मुंतक़िल थियण जो इंकशाफ़। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां नींगरी ऐं औरत समेत टिनि ॼणनि जा लाश हथ। बावड़ो भरसाणी केनाल मां औरत जो हथ पेर बदल लाश मिलियो आहे। सुञाणप नथी सघी। रोड़ी वेझो क़ौमी शाहरा तां बि नौजवान जो लाश मिलियो आहे। सुञाणप नथी सघी आहे। नगर पार्कर वेझो 15 वरनि जी नींगरीअ जो वण में टंगियल लाश मिलियो आहे। इस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। घोट कोया वासण लक्ष्मी दियारी सिंह कोहली जो घर भरिसां बनीअ मां लाश मिलियो आहे। वारसनि जो चवणु आहे त नींगरी कानोड़ी जे ॾिण लाइ कपिड़ा न वठी ॾियण ते आपघात कयो आहे।

कराची के व्यापारी मीर रजा केस की अदालती जांच अदालती कमीशन SHO गुलिस्तान जोहर कामरान कुरेशी के तलब करे वरतो हेड मरर के भी नोटिस जारी कर छो कमीशन पारा बिन्हीं ऑफिसर के 7 सितंबर से पेश थे हिदायत कर छी मीर रजा जो लाश गुलिस्तान जोहर थाने की हद में मिलो हो कराची की अदालत पी ए धी के गाड़ी के टक्कर में मारिंदड़ औरत नताशा के मंशियात केस में बरी कर छो जवाबदार के वकील अदालत के बुधायो त केमिकल ब्लड टेस्ट में नताशा के रत में आइस की मौजूदगी साबित ना थी पुलिस पारा नताशा के वरतल नमून में जांच ऑफिसर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लिखाई हुई पुलिस मूजिब नताशा मर्कज केस में आगे बरी थी चुकी है हादसों August 2024 में तस्लीम करने मुतालबो अगवाणन है हाजिर सर्विस फौत थे रिटायर्ड मुलाजमन की औलाद के ग्रेड 1-4 ताई 25 सैकड़ों कोटा तहत फौरी नौकरियों डिन वन मलीर सिटी के इलाके गाजी बिरोही गोठ के मलीर मॉडल सेकेंडरी स्कूल की इमारत से कब्जो बरकरार समय शागिर्दन एहतजाजन रोड से असेंबली कर रोड से ही पढ़ लगा उस्तादन शागिर्दन पारा स्कूल का कब्जो खत्म कराने जो मुतालबो

घोटकी पुलिस मोबाइल तो टिन नौजवान के खंभे गुम कर वारसन जो एहतजाज टिन्हीं नौजवान के आजाद करण जो मुतालबो गोठ अबुल मीर बार जे रहवासी पुलिस खिलाफ एहतजाज कर अखबार घोटकी पुलिस हफ्तों पैर टिन नौजवान के तनवीर अहमद तौफीक नोमान मीरानी के खंभे गुम कर नौजवान के आजाद किया वे।

दौलतपुर सफर में चयन बारनि जी माउ जे क़तल ख़िलाफ़ संदसि वारसनि जो दादू में एतिराज़। महीनो अॻु क़तल थियल नुसरत मला जे वारसनि एतिराज़ी मुज़ाहिरो करे कचहरी रोड ते धरणो हयो। औरत जे वालिद मंज़ूर मला जो चवणु आहे त धीअ जी दौलतपुर सफन वासी शमन मला सां शादी कराई हुई, खेसि चार ॿारनि जो औलाद हो। धीअ खे मुड़ुस ऐं सहुरनि गोलियूं हणी क़तल करे मुख़ालफ़नि ते इल्ज़ाम हयो आहे। नुसरत जे मुड़ुस ऐं ॿियनि खे गिरफ़्तार करे संदनि ख़िलाफ़ क़तल केस दाख़िल कयो वञे। सखर में मोटरसाइकिल चोराए फरार थींदड़ हिकु जवाबदार खे शहरीन पकड़े वरितो। ॿियो फरार थी वियो नादरा ऑफिस ॿाहिरां। मोटरसाइकिल चोरी करे फरार थींदड़ जवाबदारनि खे शहरीन पकड़े वरितो। हिकु फोरू मोटरसाइकिल समेत पकड़िजी पियो। ॿियो फरार थी वञण में कामयाबु थियो। शहरीन पकड़ियल फोरू खे पुलिस हवाले करे छॾियो। फुलजी स्टेशन भरिसां 8 ॼणनि जे क़तल केस में 14 ॼणनि जी गिरफ़्तारी ज़ाहिर। हथियार बि हथ कया विया। चांडिया बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़े दौरान क़तल थियल 8 ॼणनि जे केस में पुलिस जूं कारवायूं। पुलिस ॻुझी इतलाह ते छापो हणी क़तल में मुलविज़ जवाबदार गिरफ़्तार कया। गिरफ़्तार जवाबदारनि में मोहम्मद यासीन सिंगार, तौफ़ीक शेर खान, राशिद ऐं ॿिया शामिल आहिनि। गिरफ़्तार जवाबदारनि वटां 3 कलाशनकोफ, 3 G3 बंदूकूं ऐं वॾे अंग में गोलियूं हथ कयूं वयूं। मक़सूदो रिंद जे गाजरावा में पाणीअ खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एतिराज़। शाहपुर चाकर रोड ते धरणो। बाबूछन शाख जे आबादगारनि पाणीअ खोट ख़िलाफ़ शाहपुर चाकर रोड ते एतिराज़ी मुज़ाहिरो करे धरणो आयो। आबादगारनि जो चवणु आहे त मुंड में वधीक वाटर कोर्स कढण सबबु पुछड़ीअ ताईं पाणी नथो पहुचे। फसुल तबाह थी विया आहिनि। पाणी फराहम कयो वञे।

0: ऐं कारूंजर जी कोयल फौजिया सूमरो जे विछोड़े खे चोवीह वरवामी विया। संदसि ॻायल गीतनि जो राज अॼु बि हज़ारे दिलनि ते राज बरकरार आहे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: आप सुन रहे हैं
4: जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम। यहां वहां GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: to the limit, create any new problems out of this territory. आखिर में ये कहना जरूरी है कि सिंध इज वन एंड शेल रिमेन वन.
1: Now I put the resolution to the House. Those who are for the resolution may say aye. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, and the resolution is passed unanimously.
2: सिंध हिक आहे ऐं हमेशा हिक रहंदी. सिंध संभली सिंध जे वहादत ख़िलाफ़ थींदड़ साज़िशुनि ऐं धरतीअ जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ हिकु भेरो ॿीहर यकरा ठहरा मंज़ूर करे वरितो. सिंध संभली में नवनि सूबनि ऐं इंतज़ामी यूनिट्स बाबति रिथ ते बहस मुकमल थियण बाद पीपुल्स पार्टी MP निसार खोड़ो सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ ठहरा पेश कयो, जेको ऐवान यकरा मंज़ूर करे वरितो. ठहरा में चयो वियो त मुल्क में नवनि सूबनि इंतज़ामी यूनिट्स जे हवाले सां नए सिर बहस शुरू थी वियो आहे. अहिड़नि तजवीज़ुनि जो असर सिंध ते पइजी सघे थो. सिंध हिकु तारीख़ी, तहज़ीबी ऐं आइनी सुञाणप रखंदड़ खितो आहे. सिंध जी सुञाणप इलाकाई तसलसल सदियूं पुराणो आहे. सिंध अणटुट सूबे जी हैसियत सां पाकिस्तान में शमूलियत इख़्तियार कई हुई. हीउ ऐवान हिकु भेरो ॿीहर सिंध जे इम्कानी विरहाङे खे सख़्तीअ सां रद्द करे थो. निसारमंद खोड़ो पारां पेश कयल ठहरा जे मतन में चयो वियो आहे त सिंध संभली शबेरा ठहरा मंज़ूर करे सिंध जे इम्कानी विरहाङे खे रद्द करे चुकी आहे. आइन में वाज़ आहे त सूबे जूं हदूं तब्दील करण लाइ लाॻापियल संभलीअ मां ठहरा मंज़ूर थियणु ज़रूरी आहे. सिंध मां कंहिं बि ज़िले, डिवीज़न या इलाइक़े खे धार करणु या वफ़ाक़ी निज़ाम में मातहत रखण खे रद्द करे थो. सूबाई संभली सिंध जे हदुनि में कंहिं बि क़िस्म जी तब्दीली जी इजाज़त नथी ॾिए. ऐवान वाज़े लफ़्ज़नि में ऐलान करे थो त सिंध हिकु आहे, हमेशह हिकु ई रहंदी.
3: इधर आज अभी अनफॉर्चुनेटली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लंबी चौड़ी तकरीर झाड़ के चले गए, जिसका मतलब कुछ नहीं था. एंड ऑफ द डे मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे और कोई लफ्ज आता नहीं, उर्दू मेरी कमजोर है. इतना बड़ा दोगलापना मैंने नहीं देखा कभी. मुझे और लफ्ज नहीं आता. अगर कोई और लफ्ज हो सही या कोई और मुझे बता सके कि इसका दोगले का और क्या लफ्ज है, कि एक तरफ कहते हैं कि हमें सिंध की डिवीजन मंजूर नहीं, और उसके बाद जो उन्होंने पढ़ी थी, मैंने तो इसलिए जो उन्होंने दिखाई थी, एक मुहिम चली कि कराची को सिंध से अलग किया जाए. निसार खोड़ो इस बहस को सही जगह पे लेके आया जहां पे ये डिस्कस होनी है, और उन लोगों के मुंह बंद करने के लिए जो कि ऐसी जगहों पर ये डिस्कशन करें जहां इनकी कोई जरूरत नहीं है. टेलीविजन शोज पर इसकी जरूरत नहीं. आप करें, फैसला इधर होना है, फैसला इधर हो चुका है. बेवकूफ बनाना ये इनका काम है. अच्छा, अब मसला ये है कि लोग इनसे बेवकूफ नहीं बन रहे, लोग इनको वोट नहीं दे रहे, तब किसी और को राजी करने के लिए सारा काम कर रहे हैं.
2: MKM वारा सिंध जो विरहाङो नथा चाहिनि त ऐवान मां भॼी छो विया. नवनि सूबनि जो फ़ैसिलो TV प्रोग्रामनि ज़रिए न पर असेंबलीअ में थियणो आहे. ख़बर पइजी वई त कहिड़ा माण्हू सिंध जे विरहाङे जे ख़िलाफ़ आहिनि ऐं कंहिंजो ॿिटो मयार आहे. TV विकिणी बंदूक खणण जी ॻाल्हि कंदड़ लीडर ख़बर न आहे हाणे किथे वेठो आहे. सिंध जे वहद ते ॿिटो मयार क़बूल नथो करे सघिजे. ख़बरदार करियूं था त क़ौमी असेंबली बि सिंध जे विरहाङे जी ॻाल्हि नथी करे सघे. सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो सिंध असेंबलीअ में ख़िताब. वॾे वज़ीर चयो त लाहौर में वफ़ाक़ी वज़ीर निज़ाम तबाह थियण जो, चयो त बिज़नेस मैन ताड़ियूं वॼायूं. छा हाणे अरबपति बिज़नेस मैन नवनि सूबनि जो फ़ैसिलो कंदा? समुझ में न पियो अचे सिंध असेंबलीअ में मौजूदु मुबैना PTI वारा हिदायतूं कंहिंखां वठी रहिया आहिनि. PTI वारा असांजे साम्हूं अची चवंदा त सिंध जे विरहाङे ख़िलाफ़ आहिनि.
0: क्योंकि ये इस तारीखी दिन पे ये वोट में शामिल नहीं होना चाहते, और ये वॉकआउट का बहाना बना के असेंबली का फ्लोर छोड़ के भाग रहे हैं. कि किस तरीके से असेंबली का फ्लोर छोड़ के MQM भाग रही है इस तारीखी मौके पे, इस करारदाद का हिस्सा नहीं बन सकती, नहीं बनना चाहिए. जिस तरीके से आज PTI ने बायकॉट किया है,
4: आज ये चीज बहुत वाज़े हो गई है.
0: और सिंध के सामने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक्सपोज हो गई, और वाइड पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, वाहिद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो सिंध के आवाम के साथ खड़ी है और मरते दम तक खड़ी रहेगी
1: इंशाल्लाह।
2: सिंध संभलीअ में सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ पेश खां अॻु अपोज़ीशन जो ऐवान मां वाकआउट। अपोज़ीशन लीडर अली खुर्शीदी ख़िताब कंदे चयो त सिंध संभली अॻु ई पंज भेरा सिंध जो विरहाङो रद्द करे चुकी आहे त पोइ रिथ ते बहस ई न थियणु खपंदो। पर पीपीए वटि नाकामी लिकाइण लाइ ॿियो कुझु न हो, संदन कारकरदगी ज़ीरो आहे। ध्यानु हटाइण लाइ रिथ आंदी वई, असां सिंध जो विरहाङो नथा चयूं, कंहिंखां सर्टिफिकेट वठण जी ज़रूरत न आहे, असीं सिंध सां केतिरी मोहबत करियूं था।
0: लीडरशिप की कही हुई बातें, लिखी हुई बातें, साइन की भी बात है, आप उनकी भी बात नहीं मानते हो। ये वाले मंजर नहीं चलने वाले भाई जी, ये कैसे पुरानी हो गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। कोई नई चीज लाओ, नई चीज बेचारे ला नहीं सकते। तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का नैरेटिव मैंने आपके सामने रख दिया है कि हम सूबे की तकसीम नहीं चाहते और एहतजाजन गवर्नेंस को लाती है, छुपाती है ताकि सिंध के लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके। हम ऐसी करारदाद को नहीं मानते और इसको अपोज करते
4: हैं। अली खुर्शीद जी, बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। अली खुर्शीद जी साहब, अली साहब, अली खुर्शीद जी साहब,
0: नहीं सर, नहीं सर, सर नो मोर डिस्कशन।
4: अली खुर्शीद जी साहब,
0: नो मोर डिस्कशन।
4: ये वॉकआउट ना करें, ये वॉकआउट ना करें, वॉकआउट ना करें। इज्जत
5: सिंध के लोगों का रोमांस है इस मिट्टी के साथ, सिंध के लोगों को मोहब्बत है सिंध लव्स के साथ। और सिंध के लोग वो कहते हैं कि जी हमारा जीना मरना, हमारी हर चीज जो है ना, वो सिंध सुबह है और ये मिट्टी। जितना सिंध का आदमी, जितना सिंध का शहरी अपने प्यारे वतन पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, उतनी ही मोहब्बत वो इस सूबे सिंध से भी करता है। पाकिस्तान हमारे लिए रेड लाइन है, पाकिस्तान की वैधानियत हमारे लिए रेड लाइन है, पाकिस्तान हम सबकी कमजोरी है। इसी तरीके से सूबे सिंध भी हमारे लिए कमजोरी, सूबे सिंध से भी हमारी वही मोहब्बत है और वही अकीदत है। और मैंने कहा हमारे सिंध के तमाम लोगों से उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने कहा आप बेफिक्र हो जाएं, आपके मुंतखब नुमाइंदे असेंबलियों में बैठे हुए वो मर जाएंगे, कभी भी सिंध पे सौदेबाजी नहीं करेंगे।
6: सिंध का बच्चा बच्चा इस बात पे खड़ा है कि हम सिंध को डिवाइड नहीं होने देंगे, हम सिंध नहीं बेचेंगे। ये धरती माँ हमारी है, हम इसकी हिफाजत करेंगे।
7: सिंध की तस्सीम की बात होगी, वजारत को लात मारेंगे, मेंबरशिप को लात मारेंगे, सियासत को लात मारेंगे, पड़ा तो अपनी जान भी दे देंगे। लेकिन सिंध को तस्सीम करेंगे। बहुत शुक्रिया।
2: पीपल्स पार्टी मेंबर सिंध जे इम्कानी विरहाङे खे मुकमल तौर रद्द करे छॾियो। एम क्यू एम ऐं अपोज़िशन जे ॿियनि पार्टियुनि ते सख़्त तनक़ीद। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त एम क्यू एम वारनि जो बिटो मयार आहे, ठहराउ खां बचण लाइ वॉकआउट जो बहानो बणाए भॼी विया। सिंध जा माण्हू पंहिंजे धरतीअ सां बे इंतिहा मोहबत कनि था, असां मरंदे मरी वेंदासीं पर सिंध जी सौदेबाज़ी न कंदासीं। एम पी ए फरियाल टालपुर चयो त सिंध जे वादे ते कंहिं बि क़िस्म जी सौदेबाज़ी न थींदी, भले इस्तीफ़ा ॾियणी पए पर सिंध जो विरहाङो न थियणु ॾिबो। असांखे भॼी ॿाहिरनि मुल्क न आहे वञिणो, पर हिते ई जीअणो ऐं हिते ई मरणो आहे। सूबाई वज़ीर सईद गनीअ चयो त असां लाइ सिंध जे वहदत खां वधीक का बि शइ न आहे, विरहाङे जी ॻाल्हि थी त सियासत वज़ारत ऐं मेंबरशिप खे लत हणी छॾींदासीं, सिंध जे वहदत लाइ जान बि क़ुर्बान करे छॾींदासीं। हुकूमत पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि में हिकु भेरो ॿीहर वाध करे छॾी। पेट्रोल 2.84 रुपया ऐं डीज़ल 2.28 रुपया फी लीटर महांगो थी वियो। पेट्रोल जो नओं अघु 349 रुपया ऐं डीज़ल जो नओं अघु 374.31 रुपया फी लीटर मुक़ररु। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोल ऐं डीज़ल जा नवां अघु 4 सेप्टेम्बर लाइ हूंदा। वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं जमायत इस्लामी सां ॻाल्हियूं, कमेटी बि जोड़ी वई। जमायत इस्लामी धरणा ख़तमु करण लाइ पेट्रोलियम लेवीअ जे ख़ात्मे सूदो 3 शर्त रखी छॾिया। मुल्क गिर हड़ताल दौरान हुकूमती वफ़द जमायत इस्लामीअ जे हेडक्वार्टर मंसूरा पहुची ॻाल्हियूं कयूं। जमायत इस्लामी पारां पेट्रोलियम लेवी जो खात्मो आईपी मुआदो खत्म करण बिजली के अगन में घटताई जो मुतालबो मुलाकात का गडियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे जमायत इस्लामी के अमीर हाफिज नईम धरणन जो को भी शौक ना आवाम के दरपेश मसलन के हल ला उवी डी का धरना आया वफाकी वजीर अहसन इकबाल जो चवण है जमायत इस्लामी वट पेट्रोलियम लेवी घटाण की तजवीज है तो खेन खुशी थी। राणा सनाला चे तो हाफिज नईम बुधा तो अड़ी तजवीजू आन जिन से आवाम के रिलीफ मिलंद हुकूमत अमल जोगिन तजवीजों से अमल जरूर कंदी। कौमी असेंबली के घरू मामलों बाबत स्टैंडिंग कमेटी जो इजलास इस्लामाबाद लाए मकानी हुकूमत वे कानून 2026 की मंजूरी पीपुल्स पार्टी पारा मुखालफत कादिर पटेल चाहिए तो इस्लामाबाद सूबो थो तो कड़ो निज़ाम होंद मकानी चूंड तो इस्लामाबाद ए पंजाब में थियणी ना बिल से इख्तिलाफी नोट दिनो वो ममलकती वजीर तलाल चौधरी तो इस्लामाबाद में थाना विक्रो नायन थींदा नई कब्जा कया वेंदा बरसात जो पानी भी इस्लामाबाद में जल्द निकरी वो कारकर्दगी से गाल थी सके थी। सिंध के दौरे से आयल केपी जो वडे वजीर सोहेल आफरीदी उबावड़ो गुड्डू ए कंदकोट का ठुल पहुंची वो मुख्तलिफ हंधन से संदस आजियां कई वही। सोहेल आफरीदी तो हुक्मरानन करप्शन के पैसन में परडे में फ्लैट ए बंगला खरीद कया कारकुन 27 सेप्टेंबर से रोडन से निकरी एहतजाज कन

0: ते हथियारबंदन फायरिंग करे नौजवान राजा ओडो के कतल करे छडियो। वाके बाद हथियारबंदन फायरिंग कंदा फरार थी विया। कुनरी में जवाबदार संगावती तकरार ता नौजवान के कुआड़ियोनी कतल करे छडियो। मोटरसाइकिल सवार जवाबदार चुपाए माल के व्यापारी बशीर कपरी के कतल कयो। वारसन जो चवण आए त कपरी बिरादरी से संगावती तकरार ता हलंदड़ झगड़ो हो जैता नौजवान के कतल कयो वयो आए। जवाबदार गिरफ्तार कया वन। नवाब शाह में सोनारे के घर से मुबैना हमलों संदस पुट जख्मी। वाके बाद व्यापार इलाके वासन जो सकरण रोड से एतजाजी मुजाहरो धड़ो टायरन के बायू डे रोड ब्लॉक कयो वयो। सोनारे इरशाद खोखर जो चवण आए तो जीशान नोमान मलक ए बियन मुझे घर से हमलो करे मुझे पुट के जख्मी कयो। हमलो कंदड़न मुझे दुकान से भी हमलो करे कब्जो करने की कोशिश कई। मुजाहरीन चयो तो हमलो कंदड़ जवाबदारन के गिरफ्तार न कयो वे तो हड़ताल जो भरपूर सड न वेंदो। खैरपुर नाथन शाह के गोठ घर पांजा में वीन वरियन की पनल नारी जो गोली लगल। लाश हथ इलाके में रेहाना चांडियो की खुदकशी जा चोबोल। पुलिस लाश पोस्टमार्टम बाद वारसन हवाले कर छो। पुलिस मूजिब शुरुआती जांच में मालूम थो है त नारी घर अणत बणत खुदकशी कई है। वधिक जांच कई पई वे। खानपुर में फोरू बेवा बुढ़ड़ी के कनन में पातल सोनियों वाली लाए फरार थी विया। औरत जो वीडियो बयान वायरल। बुढ़ड़ी साबुल खातू चवण आए तो कुंभर पाड़े में अणजातल जवाबदार यर्गमाल बनायो। घोटा डई तशद्दुद करे कनन में पातल सोनियों वाली जबरदस्ती लाए फुर करे वया। वालियों छिकण सबब कनन के जख्म रसिया। औरत के भा गुलाम कंबर जो चवण है तो वाक्य बाबत खानपुर पुलिस के इतलाह किया है पर पुलिस असि मदद न पई करे। असी गरीब आयो फुर थियल सोनियों वाली वापस कराई वन।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

मेरी कॉल देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कौन आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। चलें चलें जी, आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस फोन कि ऐसा ही होगा, पर कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हम आपके लिए गाना चला देते हैं जनाब, तो आप इस गाने को सुनिएगा। अशफाक नियाज़ी आपके साथ है और जनाब मेरे साथ रहकर आप इंजॉय करें फिलहाल जबरदस्त सा गाना। सौदा इक जया दिल लेना ते दिल मंगना ऐ सौदा इक जया, क्या बात है। तो जनाब इस गाने को आप सुनिए, अशफाक नियाज़ी के साथ रहिए और जनाब जनाब जनाब जनाब शाम के 7 बजे तक मेरे साथ रहिए। गर्मी हो, सर्दी हो, खिजा हो, बाहर हो, लेकिन आपने इस गाने को ज़रूर इंजॉय करना है, मेरे साथ रहकर इस ट्रांसमिशन को ज़रूर इंजॉय करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जितनी देर हमारे साथ रहें उतनी देर आपको बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आप बोर फील हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप रज रज के एंजॉय करें और हंस हंस के एंजॉय करें। तो एंजॉय कीजिए ये जबरदस्त गाना और हमारे साथ रहिए जीएफएमएच नेटवर्क पर शो आई लव यू ऑल में।

0: वेलकम बैक वे सोने दे कंगना सौदाई को जया दिल देना ते दिल मंगना सौदाई को जया क्या बात है जना। बहुत प्यारा सा और बहुत एनर्जेटिक सा गाना हमने आपके लिए प्ले कर दिया। आई एम डैम श्योर कि आप लोगों की जो है एनर्जी लेवल बहुत हाई हो चुका होगा और हम यही चाहते हैं कि आप जहां भी रहें आपका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई रहे। खैर जनाब लेते हैं शो की एक और कॉल यानी कि पहली कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। आप हमारा नंबर नोट डाउन कीजिए 03000113488 और कॉलर को कहते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम।
1: कहानी सबकी एक।
0: अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब हमारे कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी क्या हाल है? ठीक ठाक मजे में तमाम बधाई
2: हो।
0: हेलो हेलो अच्छे थी आवाज।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जलूरी खाम अकेले के। हेलो हेलो आवाज अच्छे थी अदा।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम अदा।
2: हेलो
0: अब बड़े मरिया से यानी कितरो दफा चकमा
2: से। हेलो इशराक भाई।
0: जी जी मुझे प्यारा जलूरी का भाग कुर्बान खास।
2: हेलो अगर कुर्बान अली खास करी मेरा बोला जी गुलाम खास करी ने भी गंडो मरी का भी आवाज खोल के।
0: अच्छा आवाज कौन थी? अच्छे हाने अच्छे थी।
2: हेलो
0: हेलो मुख्य मैच बात हुआ तो मैं रोने
2: लगा। आवाज किसको?
0: अदा दिसो अच्छे थी हाने आवाज।
2: आवाज में बोले
0: तहां गले तो वनो। हेलो हेलो ठिप कोन थो अचे आवाज़ भाऊ हाणे छा कयूं। अच्छा बाबा ॾिसूं था हाणे ठिप त अचणु खपे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ जाऊँ, किसको खाऊं, ये बताएं। वहां से थोड़ी सी देखें तारे वारे हिलाएं थोड़ी सी, क्या पता है इस तरह हो जाए। एनीवे आपका अपना इशफाक रियाजी आ चुका है आपके साथ, आपका अपना शो है जनाब। और ये टेक्निकल फॉल्ट्स जो होते हैं अमूमन मेरे हिस्से में क्यों आ जाते हैं, तो जनाब देखते हैं अब एक और कॉल लेकर के क्या है।

0: हा
1: गुड हाणे अचे थी गुड गुड वेरी गुड ऐं केरु पियो ॻाल्हाए किथां पियो ॻाल्हाए शिकारपुर खां जमालदीन भयो साहब तव्हांखे पहिरीं कुर्बान ख़ासि खेली साहिबु हुयो जंहिंजी आवाज़ बिल्कुल बि न पई अचे टेक्निकल फॉल्ट जे करे त हाणे तव्हांजा कहिड़ा हाल चाल आहिनि मामा जमालदीन भयो साहब फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास ए वन मज़े में जमालदीन भयो के मां मामा इन करे चवंदो आहियां त असांजे दोस्त जो मामो आहे हुनजो नालो बि जमालदीन भयो आहे ऐं असां हुनखे मामा मामो कोठींदा आहियूं त हिन लाइ मां जमाल साहब खे बि मामो कोठींदो आहियां अच्छा ॿियो वाह ठीकु ठाक फर्स्ट क्लास मज़े में अच्छा इहो ॿुधायो ज़िंदगी कीअं थी गुज़रे तव्हांजी साईं माशाल्लाह माशाल्लाह हर हाल में शुक्र अदा करणु खपे इहो ॿुधायो त कहिड़ो गानो ॿुधणु चाहियो था अॼु मुमताज़ लाशारी जो कोई बि गानो या तव्हां पंहिंजी कोई ॿुधायो फरमाइश ओके सुठो गानो तव्हांखे ॿुधायूं था कंहिंजे नाले करणु चाहियो जी जी वालेकुम अस्सलाम थैंक यू थैंक यू सो मच जमालदीन भाई साहब जी जी हमारे साथ है जमालदीन भयो साहब और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं हम लेते हैं शो की एक और जबरदस्त कॉल देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
1: जी जनाब केर सा सबनी सा गड मयार अली करोड़ो साहब केड़ा हाल चाल ठीक ठाक आयो
2: प्रोग्राम जबरदस्त लॻंदो आहे
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह इहो ॿुधायो कलवड़ भात गानो मुमताज़ कलवड़ो साहब इहो ॿुधायो हाणे जेको आहे मां गानो थो हलायां मुमताज़ लाशारी जो कंहिंजे नाले करणु चाहियो
2: मुंहिंजो भाउ मां अमीन कलोड़ो कंजारे खां निसार कलोड़ो ॿुधी वियो अफ़ज़ल कलोड़ो जेके ॿुधंदा उन्हनि खे सभिनी खे नाले ऐं इहो कलाम ॿुधायो कावड़ में आहे कुर्बो घणो अथव प्यार लाइ छा हूंदो
1: अच्छा ओके तुंहिंजी कावड़ में आहे ओके ओके ओके ठीकु आहे मां इहो गानो थो प्ले कयां थैंक यू सो मच करोड़ा भाउ थैंक यू
2: ठीकु आहे
1: थैंक यू हमारे साथ बहुत प्यारे से कॉलर जनाब जमालदीन भयो साहब कलहोड़ा भाई और अब देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पर कौन आने वाले हैं जनाब अपने कॉलर को हम कहेंगे अस्सलाम वालेकुम हेलो जी जनाब अपने अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम अस्सलाम
1: एक तो आपका ये टाइम बहुत खराब है यार इरफान 26 होते तुम आ जाते मेरे साथ
3: हाँ यार हर किसी का अपना अपना टाइम है
1: अपना अपना टाइम है वाकई और ये टाइम बहुत खराब है
3: पता है नहीं एक तो पता नहीं आप में फॉल्ट है आपके फोन
1: मुझ में फॉल्ट नहीं है बस वो फोन को मुझसे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी
3: मैंने पहले आपको एक मशवरा दिया था ना
1: कौन सा वाला
3: जिस टाइम आप अपना शो करें ना अपने फोन से एक सिम निकालें और ये सिम डालकर प्रोग्राम करके और फिर उसी फोन में सिम डालकर आप चले जाएं
1: बस क्या करें अब यही करना पड़ेगा मेरे भाई
3: चला एक ही सुई वचनी थोड़ी मोबाइल मार्केट
1: बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक जी जी बिल्कुल इरफान भाई क्या हाल चाल सब ठीक ठाक आयो मजे में आयो बिल्कुल इनशा मैं प्रोग्राम के बीच में वह सॉन्ग जरूर प्ले कम उनके ट्रिब्यूट जरूर दींदे अदी के तहाँ यो बुध फिलहाल जो हाँ गानों प्ले क्या तो ब फरमाइश अच चुका मुमताज़ लाशारी साहब जी तो कैंजे नाले कर चाहो
3: बिल्कुल दोस्तों के नाले कदी कोशिश कजो तो मुझे पसंद जो सॉन्ग हलो जो हलो
1: तो ना हलो तब सही गाल ओके ओके जरूर
3: ऐं सलाम सिस्टर मिसिस अली ऐं सिस्टर फौज़िया फरज़ाना सिस्टर दुआ खान राय कुमरो मंताज कुमरो हुसैन बख़्शिश हाफिज़ ग़ुलाम अहमद सांबल नज़ीर मंगीरो बचन चमानी बाक़ी जेके दोस्त ॿुधनि था सभिनी खे इरफान अली चइबो पारां थोरा थोरा
1: वालेकुम अस्सलाम थैंक यू इरफान भाई
3: तव्हांजी जान छॾी आहे इहो मिठाई विराई जो
1: थैंक यू जीते रहो थैंक यू सो मच
3: थैंक यू अल्लाह
1: हाफिज़ हम प्ले करते हैं मुमताज़ आशारी का प्यारा सा गाना सुनिए और हमारे साथ रहिए

0: 5:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम. मोरू
2: नौशहरो
1: मीरपुर.
3: हर पहर जिंदगी की लहर. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अब नाकाम हैं या हम बहुत ज्यादा पीछे रह चुके, नहीं, बाज़ुकात हमारी अच्छी चीजों को होने में वक्त लगता है। और नौजवानों के लिए एक और बात, गुस्से में कभी फैसला ना करें, जज्बात में रिश्ता ना तोड़ें और चंद लम्हों की मायूसी में अपने मुस्तकबिल के बारे में फैसला बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपका आज आपके कल की बुनियाद है। अगर हमारा आज बहुत अच्छा होगा तो यकीन जाने हमारा कल भी बहुत अच्छा होगा। तो जनाब उठंदे बेहंदे हुसन मानो हुसन हमारा जमहूरी सन भी सवाबा जरूर प्ले करेंगे हम अपने अली गुल मिरानी साहब की फरमाइश पर। हुसन वारन जो मूरी सन भी सवाबा। लेकिन उससे पहले जनाब लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। ओए जी ना, हमारे साथ लोग आते हैं फिर थोड़े से उनको आवाज नहीं आती तो वो कॉल डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी जनाब के रसना सबनी सांगर
1: हबीबुल्ला सोलंकी
0: हबीबुल्ला भाग के हाल चाल सब ठीक ठाक है हो
1: खैर सही गांव लग पंतान
0: सफा मजे में हबीबुल्ला साहब यो बुधायो त जेको आहे मां गानो तो हलाया उठंदे वेहंदे हुसन वारन जो मु दिसण बि सवाब कहें जे नाले त करण चाहियो
1: या भी कलाम हां मजा भाई रहन
0: जी
1: जमील अहमद सोलंकी रफी कु सोलंकी अब्दुल गनी सोलंकी गुलाम मेदर सोलंकी
0: मेहरबानी। जी जनाब हमारे साथ थे सोलंकी भाई और इनको सुनवाते हैं बहुत प्यारा सा गाना उठंदे वेहंदे हुसन वारन जो जेको आ मूड सण भी सवाब आ। अली गुल मिरानी साहब मौजूद है असां सभी सां गॾु, हुनजी फरमाइश से प्ले करे चुका आहियूं त ॿुधो ऐं खोर सां एंजॉय कयो।

0: आप हमें कॉल कर सकते हैं जनाब 03-0001-1-3-4-8 पर, और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। इस वक्त हम मैसेज शामिल शो करते हैं जनाब नजीर धारे जो और शम्मन अली भयो की जानिब से। दोनों कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपका शो बहुत जबरदस्त चल रहा है, हम आपका शो बड़े गौर के साथ और बड़ी चाह के साथ सुनते हैं हमेशा, और बड़ा मजा आता है आपके शो सुनकर। हम कभी कभार आपको मैसेज करते हैं और कभी कभार फरमाइश भी करते हैं, तो आपको कैसा लगता है जनाब? हमें तो बहुत ऐसा लगता है, आप बताइए कि आपको हमारा शो सुनकर कैसा लगता है। आपको हमारा शो अगर अच्छा लगता है तो आप हमें जरूर बताइए, बहुत सारी तारीफ किया कीजिए मैसेजेस में हमारा खून बढ़ता है। एनीवे गाइस, आई एम जस्ट किडिंग, और आप हमारे साथ आए और गानों की फरमाइश करें, हमें कॉल कीजिए 03-0001-1-3-4-8 पर, हमारा नंबर है, और इस नंबर पर आप हमें कॉल करके अपनी फरमाइशें भी पूरी करवा सकते हैं। और जनाब देखते हैं कि अब हमारे साथ फरमाइश पूरी करने वाले कौन से दोस्त हैं जो कि हमें कॉल कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जनाब, हम कॉल भी अटेंड कर लेते लेकिन आवाज़ नहीं आ रही होती, पता नहीं क्या मसला हो जाता है कभी कभार, और ये मसला हो जाता है और कभी कभार कॉलर्स के साथ, कभी कभी लाइनों के साथ, और कभी कभी हमारे फ़ोनों के साथ, तो ये मसले मसाइल जो हैं ज़िंदगी में चलते रहते हैं। दिल छोटा मत कीजिएगा, दिल बड़ा करके आगे बढ़िएगा, और GFMH88 नेटवर्क ट्यून कीजिए, क्योंकि हम इस वक्त सुने जा रहे हैं नेटवर्क पर, और जनाब बहुत से लोग इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो बहुत से लोगों को हम अपना नंबर बताते चलें 03-0001-1-3-4-8 हमारा नंबर है। नंबर एक बार फिर से नोट डाउन कीजिए 03-0001-1-3-4-8। लेते हैं शोकी एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे प्यारा भाग खेर सा सबनी सागर अमीर बख्श मंगरहार साहब, आज केड़ो गानो मुझे शो में बुझन चाहो था जी जी जी हाजिर हाजिर हुकुम हुकुम
1: जमे जडी दिंदो आ नमाज प्रकार से जे अपने दुआ के तो से निकाल खन दो करा से हत लो छी पला
0: सॉरी यार तवा जी काल जी इंडिया तो मा इंशाल्लाह खन जी पूरी पूरी कोशिश कंदो आने मा छा क्या
1: मेहरबानी कंदो कर सई तो सा मोहब्बत जडी काल करंदा ने
0: सर सर सर बिल्कुल तवा हमेशा कॉल कियो आसा ता सा गदायो आ ता जा कॉल जरूर कंदा से इंशाल्लाह जी जी कह जनाले त करन चाहो गानो
1: यार दो साल बाद बार बम मार पठान खान जब कह रहे हो
0: सही सही ओके मुझे प्यारा भाव ओके। तो जनाब हम फौजिया सुमरो का एक बहुत प्यारा सा गाना आपकी समातों की नजर कर रहे हैं, तो आप इस गाने को सुनिएगा और फिर हम एक और गाना भी आज इनका प्ले करेंगे, क्योंकि जनाब हमारी फौजिया सुमरो की आज जो है बरसी है, तो हम अब ये गाना जो है प्ले कर रहे हैं अपने इरफान भाई की फरमाइश पर, और दो और हमारे साथ कॉलर आए थे उन तमाम दोस्तों की फरमाइश पर, तो सुनिए।

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
1: फातिह मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: जीए एफएम 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: लीग 28 आईन तरमीम से पीपल्स पार्टी के एतमाद में वठण वारी कोशिशों तेज कर छड़ियों। नून लीग 28 आईन तरमीम से पीपल्स पार्टी के एतमाद में वठण वारी कोशिशों तेज कर छड़ियों। कानून अवर वफाकी वजीर सेनेटर आजम नजीर तारड़ की लंडन में सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। 28 आईनी तरमीम की तैयार कल मसवदे से सदर आसिफ जरदारी के एतमाद में वठण की कोशिश। सदर आसिफ जरदारी सिंध के वे वजीर सैद मुराद अली शाह फरियाल टालपुर नासिर शाह के लंडन सराय वरतो। इजलास में 28 आईनी तरमीम बाबत अहम फैसलों जो इम्कान। सिक्योरिटी फोर्सिस जो बलोचिस्तान में फितना हिंदुस्तान फितना अख़वारज खिलाफ कार्रवाई 24 कलाकन दौरान 36 दहशतगर्द मारजी वया। आईएसपीआर मूजिब कोयटिया मस्तों कलात सिबी में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई कई वही। कोयटिया के इलाके शाबान में फितना अख़वारज के चैन ठिकाणन के निशानो बनाए 26 खारजिन के जहनम भेड़ो किया वो। मस्तोंग में ऑपरेशन दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 6 दहशतगर्द भी मारजी वया। कलात में छापे दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड बिन दहशतगर्दन के मारे वो। दहशतगर्दन वटा हथ आयल बारूदी मवाद ए देसी साख्ता बम मौके ते तबाह कया वया। जारी ऑपरेशन दौरान 72 कलाकन में मारजी वयल दहशतगर्दन जो अंग 48 थी वो। बलोचिस्तान में 2026 दौरान ऑपरेशन में 1188 का वधिक दहशतगर्दन के मारे वो। अजम इस्तेहकाम तहत आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तई कार्रवाई जारी रहंदी। खिते के सालसन अमेरिका ईरान विच में गालन की बहाली लाए नए फ्रेमवर्क से कम शुरू कर छो। बरतानवी मैगजीन फिनेंशियल टाइम्स पंजी रिपोर्ट में जानायो आहे तो ओमान कतर तहरान वाशिंगटन विच में गालन की बहाली लाए नए फ्रेमवर्क से कम कर रहा है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस अमेरिका में तेल के अघर में वाद जो जिम्मेवार ईरान के करार दे छो। गालियन की बहाली लाए आबना हुरमस खोलन जो भी शर्त रखी छो। व्हाइट हाउस में मीडिया से गालाइंदे जेडी वेंस चयो तो आबना हुरमस में तेल बरदार जहाजन ते ईरानी हमलन सबब अमेरिका में तेल महांगो थी रो है। कुछ जहाज ईरानी हमलन सबब आबना हुरमस में गुजरन नथा चाहन जेके गुजरी रहा उन अमेरिका सिक्योरिटी फराहम कर रो है। अरब मुल्कन ईरान की खुद मुख्तियारी जो एतराम न कदड़ मुल्क के जवाब दियण लाए केस तई इंतजार करण घुर्जे। ईरानी परदेही वजीर अब्बास अराकची जो उर्दनी हम मनसब के बयान से जवाब। अब्बास अराकची चयो तो ईरान से हमलन लाए अरब मुल्क की जमीन ए फिजा इस्तेमाल कई है शायद उर्दनी परदेही वजीर के खबर ना है। मुश्किल फैसलन सबब मुआशी इस्तेहकाम आयो है। पाकिस्तान के बीहर उरूज ए जवाल वाले मुआशी चक्कर में वन न डींदी। इस्लामाबाद में तकरीब के खिताब कंदे नाणे वाले फाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब है तो मुल्क में सीड़पकारी बढ़ाने ला सीड़पकार सहूलतू दई रहा आयु। मुआशी तरक्की के जटादार इस्तेहकाम तरफ वी वनो है। बुनियादी सुधारन वो सिलसिलो भी जारी रखो वो। खानगी शोबे के मुल्क की मुआशी क्यादत करण के काबिल बनाया वो। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमण की सदारत है ट्रांसपोर्ट खाते जो इजलास। पीपल्स बस सर्विस डबल टेकर बसेस ईवी टैक्सी ए पिंक स्कूटीज मनसूबन से गौर विचार। ब्रीफिंग में बुधायो वो तो कंबर शादात कोट ए लाड़कानो रूट से पीपल्स बस सर्विस जल्द शुरू कई वी। शर्जील मेमण चयो तो नवन रूट्स से बस सर्विस लाए समूरा इंतजाम मुकम्मल कया वन। पीपल्स बस सर्विस जो दायरो बढ़ाने जो मकसद आवाम के बेहतर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करण है। एम قیوم پاکستان علیحدگی پسند تحریکن سندھو دیش کے نظریے خلاف سندھ اسمبلی میں ٹھہراؤ جمع کرائے چھو سندھ اسمبلی سیکرٹریٹ میں جمع کرائل ٹھہراؤ میں چھو ویو ہے ایوان علیحدگی پسند تحریکن سندھو دیش کے نظریے کے رد کرن سمیت پاکستان کی خود مختاری اتحاد علاقائی سالمیت کے نقصان پہنچائیدڑ ہر ایجنڈا کی مذمت کرے تو ایوان ان گال کی توسیع کرے تو سندھ پاکستان جو ایک لازمی ہے فخر جوگو حصہ ہے مخالف دور اغوان علی قرشیدی جو چون ہو تو اج کن اسمبلی میں ٹھہراؤ پیش کرن نہ ڈنو ویو اسپیکر دباؤ میں نظر آیا گزرے ڈی ایوان میں منظور تھل ٹھہراؤ میں مخالف دور جو گزارشوں شامل نہ کی ہوئی

स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में सिंध में पहुंतल खैबर पख्तूनख्वा जो वो वजीर सुहेल आफरीदी जैकबाबाद ए शिकारपुर का रैली की सूरत में गढ़ी यासीन पहुंतो। पीटीआई कारकुनन पारा शानदार आजियां। सुहेल आफरीदी चयो आहे त मुल्क में अवाम की हुकुमरानी लाइ जदोजहद करे रहा आहियूं, तरक्की लाइ अवाम की ॻाल्हि मञणी पवंदी।

सिंध बैराजिस इम्प्रूवमेंट मनसूबे में अरबे रुपयनि जी बेज़ाब्तगियुनि जो इंकिशाफ़। बैराजिस मनसूबे जी नाक़िस रिथाबंदी ऐं देर ते वर्ल्ड बैंक जा संगीन एतिराज़। मनसूबे में देर सबब क़ौमी ख़ज़ाने ते 10 अरब 47 करोड़ रुपयनि जो वाधू ॿार बि पियो। बैराजुनि जी बहाली वारे मनसूबे में वाधू ख़र्चनि वारो ॿार अवामी ख़ज़ाने ते मुंतक़िल थियण जो बि इंकिशाफ़।

अदालत कराची की अदालत पीए ए धीए के गाड़ी की टक्कर में मारिंदड़ औरत नताशा के मंशियात केस में बरी कर छोड़ो। जवाबदार के वकील अदालत के बुधा तो केमिकल एग्जमाइंस ए ब्लड टेस्ट में नताशा की रत में आयस की मौजूदगी साबित ना थी। पुलिस पारा नताशा के वरतल नमून से टेम्परिंग कई वही। जांच ऑफिसर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लिखाई हुई। पुलिस मूजिब नताशा मरकजी केस में अगी बरी थी चुकी है। हादसों अगस्त 2024 में पेश आयो हो। हैदराबाद में हाईवेज डिपार्टमेंट के मुलाजमन जो मुतालबन की मनता ला एहतजाज। मुलाजमन पारा जायज मुतालबा तस्लीम करने जो मुतालबो। अगवान हाजिर सर्विस फौत थियल रिटायर्ड मुलाजमन के औलाद के ग्रेड 1-4 ताई 25 सैकड़ों कोटा तहत फौरी तौर नौकरियों दिनों वन। मलीर सिटी के इलाके गाजी बिरोही गोठ के मलीर मॉडल सेकेंडरी स्कूल की इमारत से कब्जो बरकरार। सवे शागिर्दन ए शागिर्दियाणियन एहतजाजन रोड से असेंबली करे रोड से ही पढ़ने लगा। उस्तादन ए शागिर्दन पारा स्कूल तक कब्जो खत्म करने जो मुतालबो। घोटकी पुलिस मुबैना तौर टिन नौजवान के खंभे गुम कर छोड़ो। वारसन जो एहतजाज टिन्हीं नौजवान के आजाद करने जो मुतालबो। गोठ अबुल मीर बहर जरावासिन पुलिस की ज्यादतियों खिलाफ एहतजाज कयो। अगवानन जो चवण हो तो घोटकी पुलिस हफ्तों पहरी टिन नौजवान तनवीर अमन तौफीक नोमान मीरानिया के खंभे गुम कर छोड़ो हो। नौजवान के आजाद कयो वे। दादू में मोंदर वेझो एक जने जो लाश अत। गोठ बेलो शाहानी वेझो कमन की फसल में नौजवान गुलबहार शाहानी जो टे ढी पुरानो लाश अत आयो। टे ढी अग पुलिस ऑपरेशन कदे कमन की फसल में लिखल 7 जणन में 6 जणन के गिरफ्तार कयो हो। वारसन इल्ज़ाम लगायो तो हैदर उर्स ए अजहर शाहानी वारन कमन की फसल में लिखल पुट गुलबहार के बेरहमी से कतल कयो। 15 ढी अग खादिम रबनवाज ए मुजफ्फर शाहानी के कतल कयो वे हो। केस में मकतूल गुलबहार के पी बेलो शाहानी जवाबदार तौर नामजद हो। मकसूदो रिंद के गाजरावा में पानी खोट खिलाफ आबादगार एहतजाज। शाहपुर चाकर रोड से धरनो। बाबू छन शाख के आबादगार पानी खोट खिलाफ शाहपुर चाकर रोड से एहतजाजी मुजाहरों कर धरनो हो। आबादगार चवण है तो मुंड में वाटर कोर्स कढ़ सबब पुछड़ी ताई पानी नथो पहुंचे। फसल तबाह थी वह पानी फराम किया वे।

ऐं कारूंजर जी कोयल फौसिया सुमरो जी विछोड़े के चौवीह वरे विहामी विया संदसि ॻायल गीत अॼु बि वॾे चाह सां ॿुधा वञनि था।

0: सोलर है बैटरी से डायरेक्ट।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम, यहां वहां जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: हूँ ये गानों इंशाल्लाह लाइंदासे। थैंक यू सो मच अदाब। जी जना हमारे साथ थे भंगवार भाई, अब्दुल्ला भंगवार साहब, और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम।

वारनि जो ताईं असांजो प्रोग्राम पहुचाइनि था ऐं थर्ड पार्टी थर पार्के में थधी थधी हवा हले थी त दिलीप भाई इहो ॿुधायो छा कंदा।

भाई और खालिद लशारी भाई के बाद हम बात करते हैं फौजिया सुमरो की, जिन्हें हकीमा भी कहा जाता था, जो गाने के गुलकार अजीम गुलकार हाजी नथु सुमरो की बेटी थी। इन द सोर्सेस, वसाइल की कमी की वजह से उनके वालदैन सिंध में टंडो मोहम्मद खान मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने कम उम्र में ही गाना शुरू कर दिया। रिसोर्स के मुताबिक फौजिया बहुत कदामत पसंद खानदान की वजह से जनाब उन्होंने 16 साल की उम्र में समझदारी से गाना शुरू किया और रेडियो पाकिस्तान से उनका तारुफ नसीर मिर्जा के जरिए हुआ, जिन्होंने उनके साथ दो गाने रिकॉर्ड किए, कदर ना किया करो और छड़े वाई छड़े साथी सुखनजा। दोनों गाने फौरी तौर पर हिट हुए और उनको शोहरत हासिल हुई। वो थारी और मारवाड़ी जबानों में भी गाने गाती थी बिल्कुल, और जब हम ये गाने सुनते हैं तो हमें एक अलग ही दुनिया में ये गाने ले जाते हैं और बहुत बहुत सुन के मजा आता है। तो जनाब वो शादियों के मौके पर भी परफॉर्म करती थी और मुख्तलिफ समाजी मौके पर भी वो परफॉर्म करती थी। और फौजिया ने पाकिस्तान फौजिया सुमरो को पाकिस्तान की साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो की उन्होंने तारीफ में गाना भी गाया था और उन्हें शालतीफ अवार्ड से भी नवाजा गया है। अनफॉर्चुनेटली उनकी इंतकाल 4 सितंबर 2002 को हुआ किडनी फेल्योर की वजह से। तो जनाब फौजिया सुमरो अब हमें नहीं, लेकिन उनके जो गाने, उनके जो सुर हैं, उनकी जो आवाज़ है, वो आज भी हमारे कानों में रस घोल रही है। तो क्यों ना आपको सुनवाया जाए फौजिया सुमरो का एक बहुत प्यारा सा गाना। एक गाना हम पहले प्ले कर चुके हैं, एक गाना भी प्ले करते हैं और एक गाना और भी प्ले करेंगे इंशाल्लाह अपने दोस्तों की फरमाइश पर। तो हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं फौजिया का ये ज़बरदस्त सा ट्रैक, जिसे सुने और जनाब जो कि हमारे कानों में रस घोल रहा है, और ये गाना जो है दिलीप भाई की स्पेशल फरमाइश पर है।

0: साथ सही सलामत कौन है और ये वाकई सही सलामत है या इनको भी कोई जख्म वखम मिले हुए, पूछते हैं इनसे अपने कॉलर से। हेलो हेलो हेलो हेलो, ओ माय गॉड, अगेन प्रॉब्लम आ जाती है हमारी लाइनों में, पर क्या करें, क्या कर सकते हैं। एनीवे कोई बात नहीं, और हम चलते हैं मैसेजेस की जानिब। तब तक जनाब आपके प्यारे प्यारे से मैसेजेस शामिल शो करते जाएं। हुबदार अली अगेन कहते हैं, ऐसे वैसे वैसे कैसे हैं, देखो ना ये लोग भी कैसे कैसे हैं। क्या तुमने नज़दीक से देखे तन्हाई, उसके सारे रूप मेरे जैसे हैं। क्या बात है यार, ऐसे वैसे वैसे कैसे हैं, देखो ना ये लोग भी कैसे कैसे हैं। क्या तुमने नज़दीक से देखी तन्हाई, उसके सारे रूप मेरे जैसे हैं। क्या बात है यार, ज़बरदस्त शायरी आपने वहाँ से हमें दे मारी है, और बहुत प्यारी सी है, बहुत मज़े की शायरी है। आप इस तरह के दो चार और शेर जनाब हमें सुनाएं, हमें लिख के भेजें ताकि हम वो पढ़ें। बड़ा मज़ा आता है शायरी पढ़ने में कभी कभार। और शाम के चलते साए, इस वक्त बहुत से लोग बाहर निकले होंगे, बहुत से यंगस्टर्स, जेन ज़ी, और बहुत से लोग जो कि रफ ड्राइविंग करते हैं। और हम बार बार कहते हैं, बार बार प्रोग्राम्स में अनाउंस करते हैं कि यार ऐसा मत कीजिए, कि आप रफ ड्राइविंग बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि रफ ड्राइविंग ना सिर्फ आपकी जिंदगियों को खतरे में डालती है, बल्कि रोड पे चलने वाले दूसरे लोग, रोड पे सफर करने वाले दूसरे लोगों के लिए भी वबाले जान बन जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि जनाब आप रफ ड्राइविंग ना करें, ताकि आपकी जिंदगियां भी सेफ रहें, रोड पे चलने वाले जिंदगियां भी सेफ रहें, और किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, और हमेशा आप हंसते मुस्कुराते रहें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी जी, केर असा सबनी से कर दा निसार अहमद पिताफी साहब तमा अचानक गलायो मुरे अच्छर के कटी जाता वा निसार निसार भाई छा कंदा ता
1: राखी पगी
0: माशाल्लाह निसार भा ता के असन जो प्रोग्राम के लंगे तो आए जीएफएमटीआर बुधायो
1: जी से बुधायो
0: माशाल्लाह माशाल्लाह निसार भा गानो केड़ो बुधन चाहो ता फरजाना परवीन जो आया तो केजे नाल ते करन चाहो
1: भाई गानो तो मुख्या के लिखता
0: मुख्तियार जी तो ना यार ये ना करी सो
1: कौन नहीं मर रही भाई
0: ना ना बस ताजी फरमाई जरूर प्ले करता से कैंदे नाल से करना चाहो
1: जी सर पप्पू पिताजी
0: जी जी
1: वकार पिताजी
0: बस
1: क्या जी के पसंदा
0: ठीक है। थैंक यू निसार भाई, पांचो खास ख्याल रख जो।
1: थैंक यू
0: निसार भाई हमारे साथ है, मुख्तियार शिदी फरमाइश करना चाह रहे हैं। अभी दो फरमाइशें पेंडिंग में हैं, शमन अली मिराली की भी फरमाइश पेंडिंग में है, और जनाब फरजाना परवीन की फरमाइश भी पेंडिंग पे है। अब्दुल्ला भंगवार साहब ने की थी, वो गाना जरूर चलाते हैं। अभी लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: जी जनाब खैर सा सबनी सा गडो
2: सोना साईं जायद अली जत्ते पे बोले की शाबे ले गए
0: जायद भा केड़ा हाल चाल है
2: भलायूं कर दुआ शुक्र प्यारा बात नाम बुधायो कि आयो कोई शायद
0: फर्स्ट क्लास तां भारन जे दुआओं यो बुधायो शो किए तो लगे तां के
2: सोणा साईं जे सच पुछो त इलाही टाइम खां पो असां जे तां जो शो बुधो आए तमाम सुठो पियो लगे इन शाम जे थदड़े पारां बुधो
0: भला एतरे से काथे विया हो
2: बस होया रे गरीब रे पांजे मेरे कमन कारण में मजबूरी पर कोना पे अब दऊं वरी अज ही बुधो रे पर सच पुछो कसां ने प्यारा बा दादी खुशी थी दिल के शामिल थी वा
0: वाह वाह तां जे दिल जे दिल सा राह हुई तां जी कॉल भी लगी हुई दिसो
2: कॉल भी मिली हुई हिया रे पर कॉल भी शुरू किया पर प्यारा बा तां फोन ते आवाज क्लियर न पियो जे रेडियो ते बुधी गाला हां
0: अच्छा चलो ठीक है यार कोई नहीं वो मसलो हुंदो ही हुंदो आ फोनन में लाइनन में पर कोई मसलो ना है तां के अगर आवाज अचे थी ता तां भले रेडियो में बुधो मखे कोई मसलो ना है जी जनाब असां फरजाना परवीन जो गानो प्ले करे चुका हूं, अब्दुल्ला भंगवार साहब जी फरमाइश थे, पोए जख्मी खादिम जी फरमाइश थे क्लिप प्ले कंदा से, शमन जो गानो उन खां पोए दिसदा से, मुख्तियार शीरी भी प्ले कंदा से, इंशाल्लाह टाइम मिलो ता।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

जीतनो वेलकम बैक वंस अगेन. मुख्तियार शीदी का बहुत प्यारा सा गाना हमने आपके समातों की नजर किया. आप लोग हमारे साथ शाम के ढलते साए अशफाक नियाज़ी आई लव यू ऑल और GFM 88 नेटवर्क लेते शो की एक और कॉल. देखते हैं लाइन पर हमारे साथ हैं कौन. देखते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो हेलो. अस्सलाम वालेकुम.

0: हेलो जी,
1: वालेकुम
0: अस्सलाम। कौन हमारे साथ बेटा?
1: आप गैस करो।
0: मैं गैस करूं, मेरे सारे गैस खत्म हो गए। आप बताइए आप कौन है?
1: सर ज़ैनब आपके पास।
0: सॉरी
1: ज़ैनब
0: कहाँ से कॉल किया आपने बेटा?
1: सखर से।
0: कैसी हैं ज़ैनब? ठीक ठाक?
1: मैं
0: बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआएं मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताओ ज़ैनब, क्या हो रहा है आजकल?
1: सर काम फिलहाल तो बंद है।
0: अच्छा काम बंद है, तो कौन सा काम आप कर रही थी?
1: अभी मैं अबू का काम देख रही हूँ।
0: अबू का काम देख रही हैं? क्या बात है, जब आप जैसी बेटियां मौजूद हों तो खुदा, बेटों की हमें क्या जरूरत है यार। आप लोग माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, आप अपने अबू का साथ दे रहे हैं, अबू का काम कर रहे हैं, तो यकीन जाने आप बेटों से भी बढ़कर हैं।
1: जी बिल्कुल, अबू के तीन नालायक बेटे हैं लेकिन वो काम के नहीं।
0: अल्लाह ताला उन्हें भी तौफीक दे, हिदायत दे, और वो भी अल्लाह ताला कोई ऐसा करम कर दें कि वो भी अपने अब्बू के शाना बशाना खड़े हो जाएं। और वैसे आपने आज दिल खुश कर दिया कि आप ये सुनकर कि आप अब्बू के कामों को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। क्या बात है ज़ैनब, क्या सोचा है आगे, क्या करना है आपने अपने फ्यूचर में? क्या बात है, बिजनेस वुमन बनना है आपने? क्या बात है, माशाल्लाह। हमारी दुआएं, हमारे तमाम सुनने वालों की दुआएं आपके साथ हैं ज़ैनब, कि आप इंशाल्लाह ताला एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बने, अपना एम्पायर खड़ा करें और जनाब तमाम लोगों को शिकस्त दे दें।
1: जी बिल्कुल, आप दुआ करो, इसलिए मैंने आपको कॉल किया, आप सब दुआएं करेंगे
0: इंशाल्लाह। मेरे तमाम लिसनर्स दुआएं करेंगे अपनी बहन के लिए कि ज़ैनब बहन बहुत सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में और वो सबका सहारा बने
1: इंशाल्लाह।
0: हाँ ज़ैनब, ये बताओ, मैं शमन का गाना प्ले करने लगा हूँ, कौन सा गाना, ये गाना किसके नाम करना चाहोगे?
1: सर इस गाने को कैंसिल करें।
0: अच्छा कैंसिल कर देते हैं, आपकी फरमाइश पे रात कैंसिल कर दिया, बताओ।
1: ओके तो आप पायल बग्गा का गाना प्ले करें।
0: कौन सा वाला?
1: कजरे वाली अख मस्तानी।
0: साहिर बग्गा का कजरे वाली अख
1: मस्तानी।
0: कजरे वाली अख मस्तानी, ओके मैं सर्च कर रहा हूँ, ये आ गई, आ गया गाना, साहिर अली बग्गा का और सलमा साइमा नूर का ये गाना आई थिंक। किसके नाम करना चाहेंगी ज़ैनब?
1: सर आज ना मेरे साथ आपका एक बहुत बड़ी हस्ती सुन रही है।
0: अच्छा कौन सी हस्ती सुन रही है आपको?
1: नहीं सर बहुत बड़ी हस्ती, मैं नाम तो नहीं सुन रही।
0: अच्छा चले सही है, कोई बात नहीं, सीक्रेट इज टॉप सीक्रेट,
1: तो ये उनकी नानी करेंगे सर।
0: चलिए जनाब, ज़ैनब हमारी बहन हमारे साथ थी तो इनकी फरमाइश पर हम एक बहुत बड़ी हस्ती के नाम ये गाना करने चाह रहे हैं जो कि उनके साथ मौजूद हैं, शायद वो सुन रही हैं।
1: सर वेट, आपका नाम से बात करो मेरी बहन से।
0: ओके।
1: हेलो अस्सलाम भाई।
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा, ठीक हो आप? मेरी फैमिली भी ठीक है, मेरी एफएम फैमिली भी ठीक ही है और सब के सब ठीक है। ये बताओ आप क्या करते हो बेटा?
1: मैं कुछ नहीं करती।
0: ओए होए, बहन के साथ हाथ नहीं बटाती?
1: नहीं।
0: ओए होए, घर के काम भी नहीं करती?
1: हाँ वो करती हूँ।
0: क्या बात है, ये तो अच्छी बात हुई ना कि मेरी दोनों बहनें बड़ी टैलेंटेड हैं, एक घर के काम करती हैं, एक अबू के साथ हाथ बटाती हैं, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है। हाँ जी जी, मेरी बहन
1: मैंने आपको 50 कॉल किया, आपने मेरी एक भी नहीं उठाई।
0: मर जावा गुड़ खा के, मैं क्या करूँ, मेरे साथ इतने लोग होते हैं मुझे क्या पता किसकी कॉल आ रही है। तो मैं रैंडमली कॉल उठा लेता हूँ। जी
1: मैंने बहुत सारी कॉल की।
0: सॉरी कान पकड़ के मेरी बहन।
1: नहीं सॉरी की बात नहीं है।
0: हाँ तो अच्छा ये बताओ आप क्या करने के इरादे हैं फ्यूचर?
1: कुछ
0: भी नहीं, जो कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। भाइयों पे गई हो आप ना। अच्छा चले मैं गाना सुना रहा हूँ, ये आपको आपकी फेवरेट गाना मस्तानी, तो किसके नाम करना चाहेंगे? बस चले ठीक है, थैंक यू, हमेशा खुश रहो, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे दोनों बहनों के और हमेशा कामयाब रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, आप दोनों बहनों यानी कि ज़ैनब और ज़ैनब की बहन की फरमाइश पर प्ले करते हैं बहुत प्यारा सा गाना। अब ये हमारा था लास्ट सॉन्ग, अशफाक नियाज़ी को दीजिए इजाजत, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, नेक्स्ट फ्राइडे मुझसे मिलना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, जीते रहिए, जागते रहिए और सुनते रहिए GFM 88 नेटवर्क से। हमारा नेक्स्ट शो कोई भी आएगा तो वो जरूर सुनिएगा। अशफाक को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बान।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पीपल्स पार्टीअ जो ख़दशा ख़तम थियण ताईं वफ़ाक़ी हुकूमत जो साथ न ॾियण जो ऐलान। पीपल्स पार्टी अॻवान सैयद नवीद कमर पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त हू हुकूमत जा मुकमल इतिहादी त न आहिनि पर हुन जो साथ ॾींदा आहिनि। हुकूमत सम्झे थी त साथ जी ज़रूरत आहे त शिकायतुनि जो बि अज़ालो थियणु घुरिजे। संदन शिकायतूं कश्मीर चूंडनि, जजिस जी मुक़ररी ऐं ॿियनि मामलनि ते आहिनि। पार्टीअ जो फ़ैसिलो आहे त अॻभराई थियण ताईं हुकूमत जो साथ न ॾिनो वेंदो।

0: मुखालिफ़ धुर सिंध जे विरांगे वारी साज़िश लिकाइण लाइ सिंधु देश जे कूड़नि इल्ज़ामनि जो सहारो वठी रही आहे। सिंध असेंबलीअ में अपोज़िशन जो जवाबी ठहराउ अवाम खे गुमराह करण जी नाकाम कोशिश आहे। सिंधु देश हुजे या जनापुर, पीपल्स पार्टी हर सूरत में मुल्क जो दिफ़ा करणु ॼाणे थी। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह अली कुर्शीदीअ जी सिंधु देश जे बयानीअ खे रद्द करे छॾियो। नासिर शाह चयो त सिंध असेंबलीअ जो कालोको ॾींहुं तारीख़ी हो। धरतीअ जे विरांगे वारियूं साज़िशूं नाकाम बणायूं वियूं आहिनि। एम क्यू एम इजलास जो बाइकाट करे साबित कयो त उहा सिंध दुश्मन साज़िश जो हिसो आहे। पी टी आई ऐं जमात इस्लामी बे ठहराउ जे वक़्तु गैर हाज़िर रही सिंध दुश्मनीअ जो सबूत ॾिनो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरंट ऐं सकरंट जो आवाज़
3: जीए एफएम 90.8।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: सब्सक्राइब करें।

0: सिस्टम डिलीवर न पियो करे हर सूबे के टिन टुकड़न में विरायो वञे। रिथाबंदी ऐं मनसूबाबंदी वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इक़बाल मुल्क में 15 नवनि सूबनि जी तजवीज़ ॾेई छॾी। अहसन इक़बाल चयो आहे त सिस्टम घुर्बल नतीजा न पियो ॾिए, हर सूबे खे टिन हिसनि में विरिहाइणु घुरिजे। मुल्क में नवां सूबा ठाहिण लाइ सियासी इतफ़ाक़ राय अंटर आहे। जाइज़ा कमेटी जोड़े क़ौमी ऐं सियासी बहस शुरू कयो वञे। बदीन खां घोटकी ताईं पूरे सिंध खे कराचीअ मां नथो हलाए सघिजे। रहीम यार खां अटक ताईं पूरो पंजाब लाहौर मां ऐं डेरा इस्माइल खान खां चित्राल ताईं पूरो ख़ैबर पख़्तूनख़्वा पिशावर मां हलाइणु मुमकिन न आहे। सिंध असेंबलीअ जो इस्तेहकाक आहे, उहा पंहिंजो ठहराउ मंज़ूर करे सघे थी, पर पाकिस्तान जे माण्हुनि खे सुठी तालीम, सिहत, सफ़ाई ऐं साफ़ पाणी घुरिजे। उहे सभु मसला कंहिं सियासी नारे या सियासी पार्टी जे मफ़ाद खां वॾा आहिनि।
1: आईनी तरमीम ते पीपल्स पार्टी खे एतमाद में वठण वारियूं कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं। कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ जी लंडन में सदर आसिफ अली ज़रदारी सां मुलाक़ात। अठाई आईनी तरमीम जे तयार कयल मसवदे ते सदर आसिफ अली ज़रदारी खे एतमाद में वठण जी कोशिश। सदर आसिफ अली ज़रदारी सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह फरियाल टालपुर ऐं सैयद नासिर हुसैन शाह खे लंडन सॾाए वरितो। इजलास में अठावी आईनी तरमीम बाबति अहम फ़ैसलनि जो इम्कान।
0: पीपुल्स पार्टीअ जो ख़दशा ख़तम थियण ताईं वफ़ाक़ी हुकूमत जो साथ न ॾियण जो ऐलान। पीपुल्स पार्टी अॻवान सैयद नवीद कमर पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त हू हुकूमत जा मुकमल इतिहादी त न आहिनि, पर हुन जो साथ ॾींदा आहिनि। हुकूमत सम्झे थी त साथ जी ज़रूरत आहे त शिकायतुनि जो बि अज़ालो थियणु घुरिजे। संदनि शिकायतूं कश्मीर चूंडनि, जजिस जी मुक़ररी ऐं ॿियनि मामलनि ते आहिनि। पार्टीअ जो फ़ैसिलो आहे त अॻभराई थियण ताईं हुकूमत जो साथ न ॾिनो वेंदो।
1: एमकेएम पाकिस्तान अलहदगी पसंद तहरीकनि ऐं सिंधु देश जे नज़रिये ख़िलाफ़ सिंध असेंबली में ठहराउ जमा कराए छॾियो। सिंध असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करायल ठहराउ में चयो वियो आहे त ईवान अलहदगी पसंद तहरीकनि ऐं सिंधु देश जे नज़रिये खे रद्द करण समेत पाकिस्तान जी ख़ुदमुख़्तारी, इतिहाद ऐं इलाक़ाई सालमियत खे नुक़सान पहुचाईंदड़ हर एजेंडा जी मज़म्मत करे थो। ईवान इन ॻाल्हि जी तौसीक करे थो त सिंध पाकिस्तान जो हिकु लाज़मी ऐं फ़ख़्र जोॻो हिसो आहे। मुख़ालिफ़ तुर अॻवान अली ख़ुर्शीदी जो चवण आहे त अॼु खेन असेंबली में ठहराउ पेश करण न ॾिनो वियो। स्पीकर दबाव में नज़र आयो। गुज़िरियल ॾींहुं बि ईवान मां मंज़ूर थियल ठहराउ में मुख़ालिफ़ धुर जूं गुज़ारिशूं शामिल न कयूं वयूं।
0: मुख़ालिफ़ धुर सिंध जे विरांगे वारी साज़िश लिकाइण लाइ सिंधु देश जे कूड़नि इल्ज़ामनि जो सहारो वठी रही आहे। सिंध असेंबलीअ में अपोज़िशन जो जवाबी ठहराउ अवाम खे गुमराह करण जी नाकाम कोशिश आहे। सिंधु देश हुजे या जनाहपुर, पीपुल्स पार्टी हर सूरत में मुल्क जो दिफ़ा करणु ॼाणे थी। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह अली ख़ुर्शीदीअ जी सिंधु देश जे बयानीअ खे रद्द करे छॾियो। नासिर शाह चयो त सिंध असेंबलीअ जो कालोको ॾींहुं तारीख़ी हो, धरतीअ जे विरांगे वारियूं साज़िशूं नाकाम बणायूं वयूं। एमक्यूएम इजलास जो बाइकाट करे इहो साबित कयो त उहा सिंध दुश्मन साज़िशनि जो हिसो आहे। पीटीआई ऐं जमात इस्लामी बि ठहराउ जे वक़्तु गैर हाज़ुर रही सिंध दुश्मनीअ जो सबूत ॾिनो।
2: सिंध असेंबली जे ऐवान में हुया, हुन मां सिंध लफ़्ज़ गायब हुयो। छा सबबु हुया हुन जा?
3: सबबु इहो आहे त हिकिड़ी टेक्निकल मिस्टेक थी सघे थी। बाक़ी हाणे सिंध जेके असांजी धरती आहे उहा सिंध आहे, जेके एम क्यू एम सां तालुक रखनि था, तंज कंदा, उन्हनि बि चयो त सिंध धरती मां
4: उहो को अगरि कंहिं लिखियो हुजे पंहिंजी तरफ़ा त ख़बर न आहे। बाक़ी सभु जहिड़े ई हुआ, सभु ते इहो असेंबली लिखियो।
2: छा दबाउ हुयो छा तव्हां?
5: असां बीठा किथे आहियासीं, कहिड़ी असेंबली सिंध जो हिकु आहे, हिकु रहंदी
2: लिखियोसीं न? असां त रत सां बि लिखंदासीं।
5: इहो कुझु कोन आहे, अजरक जो निशानो, अजरक ई निशान ई सिंध आहे।
2: धरती कहिड़ी आहे सर? हर शइ में साज़िश रहे, लेकिन असांखे दबाव हुजे हा, ऐं असां दबाव बरदाश्त या दबाव में करे अहिड़ा हुजो त रेज़ोल्यूशन पास कयूं। धरती माउ जो मतिलबु इहो ई आहे, मुंहिंजी सिंध आहे न, पोयां अजरक हुई न। अजरक छा आहे? अजरक छा खे कंहिंजी निमाइंदगी करे सिंधी करे थी न? दबाव हुयो छा भला सिंध जो नालो लिखण ते? दबाव हुयो अहिड़ी ॻाल्हि हुजे आहे त एॾो डिस्कशन कोन थिए आहे।
1: सिंध जी वहदत बाबति चरो मंजूर थियण वक्त पीपी जे मेंबरन पारां धरती माउ आहे लिखियल नारे वारे प्ले कार्ड ते सिंध जो लफ़्ज़ पहिरीं छो न लिखियो वियो। बाद में पेन सां सिंध जो लफ़्ज़ छो लिखियो वियो। उन हवाले सां केटीएन न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे पीपी मेंबरन चयो आहे त बाद में असां त लिखियोसीं न सिंध हर शइ में साज़िश नाहे गोलबी, का फनी ग़लती थी सघे थी। प्ले कार्ड जे बैकग्राउंड ते अजरक हुई, अजरक जो निशान ई सिंध आहे, अजरक सिंध जी नुमाइंदगी करे थी। को दबाव न हो, सिंध हिक आहे, हिक ई रहंदी। जेकॾहिं को दबाव हुजे हा त एॾो बहस ई कोन थिए हा। ठहराउ कीअं पास थिए हा, जिन तनक़ीद कई उहे बि चवनि था सिंध असांजी माउ आहे।
0: सिक्योरिटी फोर्सिस जूं बलोचिस्तान में फितना हिंदुस्तान ऐं फितना ख़्वारिज ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं 24 कलाकनि दौरान वधीक 36 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिबि कोइटिया, मस्तूं, कलात ऐं सिबीअ में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयूं कयूं वयूं। कोइटिया जे इलाइक़े शाहबान में फितना ख़्वारिज जे चइनि ठिकाणनि खे निशानो बणाए 26 ख़ारिजनि खे मारियो वियो। मस्तोंग में ऑपरेशन दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 6 दहशतगर्दनि खे बि मारियो वियो। कलात में छापे दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 2 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। दहशतगर्दनि वटां हथ आयल बारूदी मवाद ऐं देसी साख़्ता बम मौक़े ते तबाह कया विया। जारी ऑपरेशन दौरान 72 कलाकनि में मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंगु वधी 48 थी वियो। बलोचिस्तान में 2026 दौरान ऑपरेशन्स में 1188 खां वधीक दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो। वज़ीर आज़म पारां कामयाब कार्रवाइयुनि ते सिक्योरिटी फोर्सिस खे भेटा पेश।
1: खिते जे सालिसन अमरीका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियुनि जी बहाली लाइ नए फ्रेम वर्क ते कमु शुरू करे छॾियो। बरतानवी मैगज़ीन फाइनेंशियल टाइम्स पंहिंजी रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त ओमान ऐं कतर तेहरान ऐं वॉशिंगटन विच में ॻाल्हियुनि जी बहाली लाइ नए फ्रेम वर्क ते कमु करे रहिया आहियूं।
0: अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस अमरीका में तेल जे अघनि में वाध जो ज़िमेवार ईरान खे करार ॾेई छॾियो। ॻाल्हियुनि जी बहाली लाइ आबनाए हुर्मस खोलण जो बि शर्त रखी छॾियो। व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे जेडी वेंस चयो त आबनाए हुर्मस में तेल बरदार जहाज़नि ते ईरानी हमलनि सबबि अमरीका में तेल महांगो थी रहियो आहे। कुझु जहाज़ ईरानी हमलनि सबबि आबनाए हुर्मस मां गुज़रण नथा चाहिनि। जेके गुज़री रहिया आहिनि उन्हनि खे अमरीका सिक्योरिटी फराहम करे रहियो आहे।
1: मुल्कनि ऐं ईरान जी ख़ुदमुख़्तारी जो एतिराम न कंदड़ मुल्क खे जवाब ॾियण लाइ केसिताईं इंतज़ारु करणु घुरिजे? ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची जो उर्दनी हम मनसब जे बयान ते जवाब। अब्बास इराक़ची चयो त ईरान ते हमलनि लाइ अरब मुल्कनि जी ज़मीन ऐं फिज़ा इस्तेमालु कई आहे। शायदि उर्दनी परॾेही वज़ीर खे ख़बर नाहे।
0: मुश्किल फैसलनि सबबि मुआशी इस्तेहकाम आयो आहे। पाकिस्तान खे ॿीहर उरूज ऐं ज़वाल वारे मुआशी चकर में वञण न ॾींदासीं। इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जो चवणु हो त मुल्क में सीड़पकारी वधाइण लाइ सीड़पकारनि खे सहूलियतूं ॾेई रहिया आहियूं। मुआशी तरक़ीअ खे जटादार इस्तेहकाम तरफ़ वठी वञणो आहे। बुनियादी सुधारनि वारो सिलसिलो बि जारी रखियो वेंदो। ख़ानगी शोबे खे मुल्क जी मुआशी क़यादत करण जी क़ाबिल बणायो वेंदो।
1: सिंध जे सीनियर वज़ीर शजील अहमद जी सदारत हेठि ट्रांसपोर्ट खाते जो इजलास। पीपल्स बस सर्विस, डबल डेकर बसिस, ईवी टैक्सी ऐं पिंक स्कूटीस मनसूबनि ते गौर। ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त कंबर शहदादकोट ऐं लाड़कणो रूट ते पीपल्स बस सर्विस जल्द शुरू कई वेंदी। शजील अहमद चयो त नवनि रूट्स ते बस सर्विस लाइ समूरा इंतज़ाम मुकमल कया वञनि। पीपल्स बस सर्विस जो दायरो वधाइण जो मक़सदु आवाम खे बहितर ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत फराहम करणु आहे।
0: स्ट्रीट मूवमेंट जे सिलसिले में सिंध में पहुतल केपी जो वॾो वज़ीर सुहेल आफरीदी जैकबाबाद, शिकारपुर, गढ़ी यासीन ऐं शादादकोट खां थींदो कंबर पहुतो। पीटीआई कारकुननि पारां शानदार आजियां। सुहेल आफरीदी चयो त इस्लामाबाद में 27 सेप्टेम्बर ते थियल जलसे जी कामयाबी लाइ सिंध आयो आहियां। हुकुमराननि जो ॾाढ ऐं जबर आहे। पीटीआई बानीअ खे घर भातियुनि सां मिलण बि नथो ॾिनो वञे। बानी जो शफ़ा इस्पताल में इलाज न कराए सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम जी भञकड़ी कई वई। हक़नि लाइ अवाम खे रोडनि ते अचणो पवंदो।
6: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
7: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ जीए एफएम
8: मुकम्मल।

प्रोग्राम में शामिल कंदासीं कुड़ सारा खूबसूरत म्यूजिक ट्रैक ऐं उन खां वधीक इंपॉर्टेंट असां लाइ अव्हां जूं फोन कॉल्स आहिनि असांखे फोन कॉल करण लाइ प्रोग्राम में शामिल थियण लाइ असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03000 डबल

साॻे नंबर ते यानी 03-000-11-34-88 ते व्हाट्सएप पैगाम पिणु मोकिले सघो था। पर इहो यादि रहे त व्हाट्सएप पैगाम शॉर्ट यानी मुख़्तसिर हुजे।

साइन और दोपहरियन की आवाज़ में तमाम खूबसूरत ट्रैक सजी सिंध वारन जे नाव नई आहे नित नाज़ वारन जी बोली निगाहुन अदाउन

0: तव्हां ॿुधी रहिया आहियो प्रोग्राम दिलि जी ॻाल्हि, ऐं आउं आहियां आबिद चौहान। हींअर वक़्तु थियो आहे हिकिड़े नंढिड़े ब्रेक जो। ब्रेक खां पोइ अव्हां जूं कॉल्स बि अटेंड कंदासीं ऐं अव्हां सां कंदासीं खोड़ सारियूं दिलि जूं ॻाल्हियूं। त पोइ ॿुधंदा रहो GFM 88 नेटवर्क।
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना, फातिह मेहरान, सिंध की एक और पहचान। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by.
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
4: छा तव्हां बि पंहिंजो ख़्वाबनि जो घर हिकु अहिड़ी जाइ ते ठाहिण चाहियो था जिते हुजे तहफ़ुज़, जदीद सहूलियतूं ऐं मंज़ूर थियल सिक्योरिटी?
5: त पोइ भली कार हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर में,
4: सखर शिकारपुर रोड ते,
5: डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल साम्हूं,
4: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंज़ूर थियल
5: हिकु शानदार ऐं क़ाबिले एतमाद रिहाइशी मनसूबो।
4: हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर,
5: रिहाइशी प्लॉट 80, 120, 150 ऐं 200 गज़ जा,
4: ऐं कारोबारी मौक़े like come

0: जी दोस्तों, यो मां जो मान मोहब्बतों प्यार है जो असा के हते एफएम 88 ते आंदो है आ अवां सा गद दिल जी गाल कर रहा हूं। आवां भी पजे दिल जी गाल असा सा कर सकदा। कॉलर असा सा गद लाइन ते मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, केयर साईं किथा गा?
1: वालेकुम अस्सलाम साईं।
0: केयर पेरा किथा गा? शायर अली गुल मीरानी, मतलब शायर आयो? बिल्कुल बाबर तमाम मोहब्बती मानू है। अवां सा गाल बोल करे मुखे खुशी थी रहा है। अवां पंहिंजो तारुफ करायो है शायर जी हैसियत सां, त पोइ भला खुदा जे ॾिने मां कुझु थी वञे। दिल भी चए थी शेर अर्ज कयो तुम त मुझी दिल जी पारलिया मेंट जो मेंबर तू सुहिणा। मुझी दिल जी पारलिया मेंट जो मेंबर तू सुहिणा, ही इश्क हुकूमत आहे मिनिस्टर तू सुहिणा। तू प्यार जी पोलिंग, तुझी सूंह के वोटिंग, ही दिलड़ी आ सेनेट सेनेटर तू सुहिणा। लव यू सर, यो शेर स्पेशली अवां लाइ हुयो। पहिरां को पैगाम को प्रोग्राम में को दोस्तन के
1: पैगाम नहीं हुआ। बाबर साहब मुझे दोस्त है, पुराना 5 साल पुराना
0: बाबर के पैगाम मिल गया
1: तो कि हम लाते शरबत देने नारा सी वहां साहब की वहां फोन तो बना यहां ताकि मीठा के
0: परचा है। बता दे बाबर के परचा है वो
1: देखो दिल से हम टोड़े टुकड़ा करके खड़ी
0: है। मैं जाने गंडी दा से जोड़ी दा
1: है इनके मन को दुख दिल में बाबर साहब मुझे पान हली दो या मुरी नंबर के कार को दो दिन से मैं पर जीवन पैगाम नहीं हुआ। हर इंसान इंसान कम थे पंहिंजो भलो करे, पंहिंजे कम थे नमाज़ पढ़े, अलाह ज़िक्र करे, पंहिंजे कम थे।
0: वॾी महिरबानी साईं, वॾी महिरबानी। अव्हां जो पैगाम बाबर ताईं पहुची वेंदो।
1: ठीकु आहे
0: ठीकु आहे। वालेकुम सलाम, वॾी महिरबानी, लव यू, लख लाख क़ुर्ब।

0: जी
1: बिल्कुल से हम प्रोग्राम नायाब किलर बुद्धे को लेके सलाम मुनीर अहमद सियाल से सलाम आई मंजूर के सरपंच के सलाम आई जेके मुजा के से बाहर बुधन का उनन के
0: साई मुजा भी अमा जी सजी संगत के सलाम बड़ी मेहरबानी प्यारा प्रोग्राम में कॉल करना मोहब्बत हूं कुर्बान थैंक यू लक लाइक।

0: वेलकम बैक प्रोग्राम दिलजी गाल संगत आउ आया अब चुन आया वहां बुधी रहा हो थी एफएम नेटवर्क ब्रेक ते वनन का अग में इगले कॉलर तमाम खूबसूरत पैगाम दिलो अमन अमान कायम थे मोहब्बतूं विरहजन आए रब के परचाजे आए रब इन
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: सिस्टम डिलीवर न पियो करे हर सूबे के टिन टुकड़नि में विरायो वञे। रिताबंदी ऐं मनसूबाबंदी वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इक़बाल मुल्क में 15 नवनि सूबनि जी तजवीज़ ॾेई छॾी। अहसन इक़बाल चयो त सिस्टम घुरबल नतीजा न पियो ॾिए, हर सूबे खे टिनि हिसनि में विरिहाइणु घुरिजे। मुल्क में नवां सूबा ठाहिण लाइ सियासी इतफ़ाक़ी राय अंटर आहे। जाइज़ा कमेटी जोड़े क़ौमी ऐं सियासी बहस शुरू कयो वञे। बदीन खां घोटकीअ ताईं पूरे सिंध खे कराचीअ मां नथो हलाए सघिजे। रहीम यार खान खां वरी अटक ताईं पूरो पंजाब, लाहौर मां ऐं डेरा इस्माइल खान खां चित्राल ताईं पूरो ख़ैबर पख़्तूनख़्वा पेशावर मां हलाइण मुमकिन आहे। सिंध असेंबलीअ जो इस्तहक़ाक़ आहे, उहा पंहिंजो ठहराउ मंज़ूर करे सघे थी, पर पाकिस्तान जे माण्हुनि खे सुठी तालीम, सिहत, सफ़ाई ऐं साफ़ पाणी घुरिजे। उहे सभु मसला कंहिं सियासी नारे या सियासी पार्टीअ जे मफ़ाद खां वॾा आहिनि।
1: नून लीग अटाई आईनी तरमीम ते पीपल्स पार्टी के एतमाद में वठण वारियूं कोशिशूं तेज करे छॾियूं। कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ जी लंडन में सदर आसिफ अली ज़रदारी सां मुलाक़ात। अठावी आईनी तरमीम जे तयार कयल मुसविदे ते सदर आसिफ अली ज़रदारी खे एतमाद में वठण जी कोशिश। सदर आसिफ अली ज़रदारी सिंध जे वॾे वज़ीर मुआद अली शाह फरियाल टालपुर ऐं सैयद नासिर शाह खे लंडन सॾाए वरितो। इजलास में अठाई आईनी तरमीम बाबति अहम फ़ैसलनि जो इम्कान।
0: पीपल्स पार्टीअ जो ख़दशा ख़तम थियण ताईं वफ़ाक़ी हुकूमत जो साथ न ॾियण जो ऐलान। पीपल्स पार्टी अॻवान सैद नवीद कमर पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त हू हुकूमत जा मुकमल इतिहादी त न आहिनि, पर हुन जो साथ ॾींदा आहिनि। हुकूमत सम्झे थी त साथ जी ज़रूरत आहे, त शिकायतुनि जो अज़ालो बि थियणु घुरिजे। संदनि शिकायतूं कश्मीर चूंडनि, जजिस जी मुक़ररी ऐं ॿियनि मामलनि ते आहिनि। पार्टी जो फ़ैसिलो आहे त अॻभराई थियण ताईं हुकूमत जो साथ न ॾिनो वेंदो।
1: एमकेएम पाकिस्तान अलहदगी पसंद तहरीकनि ऐं सिंधु देश जे नज़रिए ख़िलाफ़ सिंध असेंबली में ठहराउ जमा कराए छॾियो। सिंध असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करायल ठहराउ में चयो वियो आहे त ऐवान अलहदगी पसंद तहरीकनि ऐं सिंधु देश जे नज़रिए खे रद्द करण समेत पाकिस्तान जी ख़ुदि मुख़्तारी, इतिहाद ऐं इलाक़ाई सालमियत खे नुक़सान पहुचाईंदड़ हर एजेंडा जी मज़म्मत करे थो। ऐवान हिन ॻाल्हि जी तौसीक करे थो त सिंध पाकिस्तान जो हिकु लाज़मी ऐं फ़ख्र जोॻो हिसो आहे। मुख़ालिफ़ धुर अॻवान अली ख़ुर्शीदी जो चवणु आहे त अॼु खे असेंबली में ठहराउ पेश करणु न ॾिनो वियो, स्पीकर दबाउ में नज़र आयो। गुज़िरियल ॾींहुं बि ऐवान मां मंज़ूर थियल ठहराउ में मुख़ालिफ़ धुर जूं गुज़ारिशूं शामिल न कयूं वयूं।

0: मुखालिफ़ धुर सिंध जे विरहाङे वारी साज़िश लिकाइण लाइ सिंधु देश जे कूड़नि इल्ज़ामनि जो सहारो वठी रही आहे। सिंध असेंबलीअ में अपोज़िशन जो जवाबी ठहराउ अवाम खे गुमराह करण जी नाकाम कोशिश आहे। सिंधु देश हुजे या जनापुर, पीपल्स पार्टी हर सूरत में मुल्क जो दिफ़ा करणु ॼाणे थी। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह अली कुर्शीदीअ जी सिंधु देश जे बयानीअ खे रद्द करे छॾियो। नासिर शाह चयो त सिंध असेंबलीअ जो कालोको ॾींहुं तारीख़ी हो, धरती जे विरहाङे वारियूं साज़िशूं नाकाम बणाई वयूं। एम क्यू एम इजलास जो बाइकआउट करे साबित कयो त उहा सिंध दुश्मन साज़िश जो हिसो आहे। पी टी आई ऐं जमात इस्लामी बे ठहराउ जे वक़्तु गैर हाज़िर रही सिंध दुश्मनीअ जो सबूत ॾिनो।
1: सिंध असेंबली जे ऐवान में हुया, हुन मां सिंध लफ़्ज़ गायब हुयो। छा सबबु आहे हुन जो?
2: सबबु इहो आहे त हिकिड़ी टेक्निकल मिस्टेक थी सघे थी। बाक़ी हाणे सिंध जेके असांजी धरती आहे उहा सिंध आहे, जेके एम क्यू एम सां तालुक रखनि था, तंज कंदा, उन्हनि बि चयो त सिंध धरती मां आहे। सिंध आहे जेके एम क्यू एम सां तालुक रखनि था, तंज कंदा, उन्हनि बि चयो त सिंध धरती मां आहे।
3: न उहो को अगरि कंहिं लिखियो हुजे पंहिंजी तरफ़ां त ख़बर न आहे, बाक़ी सभु हिकु जहिड़े ई हुआ, सभु त इहो सेम लिखियो।
1: छा दॿाउ हुयो छा तव्हां ते?
4: असां बीठा किथे आहियासीं, कहिड़ी असेंबली सिंध हिकु आहे ऐं हिकु रहंदी?
1: लिखियोसीं न, असां त रत सां बि लिखंदासीं।
5: इहो कुझु कोन अजरक जो निशान हो, अजरक ई निशान ई सिंध
1: आहे। धरती कहिड़ी आहे साईं? हर शइ में साज़िश आहे, लेकिन असांखे दॿाउ हुजे हा ऐं असां दॿाउ बर्दाश्त या दॿाउ में चढ़ जहिड़ा हुजो त रेज़ोल्यूशन पास कयूं। धरती माउ जो मतिलबु इहो ई आहे, मुंहिंजी सिंधु आहे न, पोयां अजरक हुई न।
5: अजरक छा आहे? अजरक छा खे कंहिंजी निमाइंदी करे थी? सिंध जी करे थी न।
1: दॿाउ हुयो छा भला सिंध जो नालो लिखण ते? कोई दॿाउ हुयो अहिड़ी ॻाल्हि हुजे आहे त एॾो डिस्कशन कोन थिए हा।
0: सिंध जी बहितर बाबति ठहराउ मंज़ूर थियण वक़्तु पी पी जे मेंबरनि पारां धरती माउ आहे लिखियल नारे वारे प्ले कार्ड ते सिंध जो लफ़्ज़ पहिरीं छो न लिखियो वियो, बाद में पेन सां सिंध जो लफ़्ज़ छो लिखियो वियो? उन हवाले सां के टी एन न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे पी पी मेंबरनि चयो आहे त बाद में असां त लिखियोसीं न सिंध। हर शइ में साज़िश न आहे गोलबी, का पनी ग़लती थी सघे थी। प्ले कार्ड जे बैकग्राउंड ते अजरक हुई, अजरक जो निशान ई सिंध आहे, अजरक सिंध जी नुमाइंदगी करे थी। को दॿाउ न हो, सिंध हिकु आहे, हिकु ई रहंदी। जेकॾहिं को दॿाउ हुजे हा त अहिड़ो बहस ई कोन थिए हा। ठहराउ कीअं पास थिए हा? जिन तनक़ीद कई उहे बि चवनि था सिंध असांजी माउ आहे। महांगाई जे घाणे में पीसजंदड़ आवाम मथां पेट्रोलियम बम हमले खां पोइ बिजलीअ जो बि वॾो झटको। नेपरा मुल्क जे वापेदारनि लाइ माहवार ऐं टिमाही एडजस्टमेंट जी मद में बिजली महांगी करे छॾी। माहवार एडजस्टमेंट में बिजली 2.06 रुपया ऐं टिमाही एडजस्टमेंट में 52 पैसा फी यूनिट महांगी। जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि माहवार एडजस्टमेंट जी वाध सेप्टेम्बर जे बिलनि में लागू कई वेंदी। जुलाई जे फ्यूल एडजस्टमेंट जो वापेदारनि ते 33 अरब रुपियनि जो वाधू बार मुंतकिल थींदो। नेपरा अप्रैल खां जून 2026 जी टिमाही एडजस्टमेंट जो फ़ैसिलो वफ़ाक़ी हुकूमत खे माणे छॾियो। टिमाही एडजस्टमेंट सेप्टेम्बर खां नवंबर 2026 लाइ लागू हूंदो। वाद के इलेक्ट्रिक जे वाफ़ेदारनि ते बि लागू। टिमाही एडजस्टमेंट जो वाफ़ेदारनि ते 12.67 अरब करोड़ रुपियनि जो वाधू बार पवंदो।
6: सिक्योरिटी फोर्सेस जूं बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान ऐं फितनतुल ख्वारे जे ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं 24 कलाकनि दौरान वधीक 36 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिबि कोयटा, मस्तूं, कलात ऐं सिबी में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयूं कयूं वयूं। कोयटा जे इलाइक़े शोबान में फितनतुल ख्वारे जे 4 ठिकाणनि खे निशानो बणाए 26 ख़ारिजियुनि खे जनम बेड़ो कयो वियो। मस्तूं में ऑपरेशन दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 6 दहशतगर्द मारिजी विया। कलात में छापे दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 2 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। दहशतगर्दनि वटां हथायल बारूदी मवाद ऐं देसी साख़्ता बम मौके ते तबाह कया विया। जारी ऑपरेशन दौरान 72 कलाकनि में मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो 48 थी वियो। बलूचिस्तान में 2024-26 दौरान ऑपरेशन में 1188 खां वधीक दहशतगर्दनि खे जनम बेड़ो कयो वियो आहे। वज़ीर-ए-आज़म पारां कामयाब कार्रवाइयुनि ते सिक्योरिटी फोर्सेस खे भेटा पेश।
0: खिते जे सालसन अमरीका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियुनि जी बहालीअ लाइ नए फ्रेमवर्क ते कमु शुरू करे छॾियो। برطانوی میگزین فنانشل ٹائمز پانچ رپورٹ میں جانا ہے تو عمان قطر تہران واشنگٹن وچ میں گالن کی بحالی لائے نئی فریم ورک تے کم کر رہے ہیں۔

0: मूवमेंट जैसे सिलसिले में सिंध में पहुंचल खैबर पख्तूनख्वा जो वो वजीर सुहेल आफरीदी जेकापा शिकारपुर गढ़ी यासिन शहदाद कोट का कंबर पहुतो। पीटीआई कारकुन पारा जिया सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद में 27 सितंबर से रिथियल जलसे की कामयाबी लाइ सिंध आयो हुकुमरान जो डाट ए जिबर है पीटीआई बानी के घर भातियों से मिलन भी नो दिनों वे बानी जो शिफा अस्पताल में इलाज न कराए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भजकड़ी कई वही हकन लाइ अवाम के रोड से अचो पवो।
1: एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सीएसएस इम्तिहान में उम्र की हद 30 में वधाए 35 साल ए शिरकत जहा मौका 3 में वधाए 5 करण वाली सिफारिशू रद्द कर छी। पार्लियामानी कमेटी अडो लिखत में मौकिफ भी पेश। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन चुना है तो उम्र की हद या इम्तिहान में शिरकत जहा मौका वधाण वफाकी हुकूमत की पॉलिसी अख्तियार में शामिल है। एफ पी एस सी रुगो हुकूमत तरफा मंजूर कल पॉलिसी से अमल करे थी। उम्र की हद ए शिरकत जहा मौका वधाण से उम्मीदवार की अंग से गडोगे इंतजामी भार भी वो। सेनेट की जैली कमेटी उम्र की हद ए इम्तिहान में शिरकत जहा मौका वधाण की सिफारिश की हुई।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो जीए एफएम 90.8।